श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है, जस डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया चालिया मुकतिया, हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट किता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सवासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत

गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रिया तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नू बख्शो सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ऐसे दीन दयाल सतगुरु

0: गुण चंगाइया तत् सब को निवै आप को पर को निवै ना कोए तरत राजू तो लिए निवै सगोरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मेरे गाहे शीस निवाया क्या थी है
1: धोत्री वस्त्र कपाटं जे जान से बर्मं करमं सब फोक निश्चौ करमं

0: चौंकण मुलण आया वह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गब्रमण थिया, ओ मुआ ओ चढ़ पया, दे तका गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पैना मिया, रात दिन सुजी नाल, तक पाहो कती है बामन वटे आए, कोई बकरा रन खाया सब को आखे पाए, होए पुराना सुटिए पी फिर पाए।

थोड़ी साहेब हो दयाल कृपा करे ता सही कर कराए सी सौ सेवक जिस सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रमाण ता कसमे का मैल पाए सी कसमे भावे सो करे मन हो चिंजा सो फल पाए सी तां दर गए।

सर्व धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहे आ भरपूर। मथे टिका तेड़ धोती कखाई, हथ श्री जगत कसाई। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश ताले पूजे प्राण। पाक्या का कुठा बकरा खाना, चौंके ऊपर किसे न जाना। देखे चौंका गड्डी कार उपराए बैठे कुड़े यार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही

0: इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़

मन च प्रभु ते विश्वास ते इस ते कृपा दा शुकराना होना बहुत जरूरी है। जेकर दिन च एक ख्याल साडे मन च है तो फिर इस दी कृपा साडे ते अपरम पार है। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

हुने तुसी सर्वन कारेसी भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स डीआरएम 864 किलोहर्ट्स एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन तुसी सुनोगे प्रोग्राम खेतीबाड़ी।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

मानस कान प्रोग्राम च हुणी तुसी सर्वन कर रहे सी रामचरित मानस दी लड़ीवार पाठ दी 196वीं कड़ी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। परिचय

आओ हुण तुहानू जानकारी दीदीए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्रामा ते उना दे प्रसारण दे समय दी। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सुन।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच कई ठोस अते विकासमुखी नतीजे निकले ने। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार दी मलकियत वाली थर्मल बिजली प्लांटा विच कोले दी कोई कमी नहीं है। गुरदासपुर पुलिस ने सरहद पारों हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के पांच मुलजमान हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब के खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने दसिया कि मौजूदा रुत 2026-27 दौरान गन्ने की काश्त हेठ रकबा वध के 1.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। पंजाब के देहाती विकास और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सौन ने कहा है कि पंजाब सरकार वालों विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम तहत पंजाब के पिंडा विच वड्डे पद्धर से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मौसम विभाग वालों 17 सितंबर तक पंजाब और हरियाणा विच कई थावां ते भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हॉकी विच भारत दियां पुरुष अते महिला टीमां ने चीन दे मौकी विच जूनियर एशिया कप दे खिताब जीत लए ने। अते पैरा बैडमिंटन विच भारत दे प्रमोद भगत ने जापान इंटरनेशनल विच पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी विच सोने दा तमगा हासिल कीता। एसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम सोनी सवेर।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, इस वेले स्टूडियोज दी साडी कड़ी मुताबक 7:03 हो रहे ने सवेर दे, ते हुण वेला हो चुक्या है प्रोग्राम सोहनी सवेर दा। ते इस सोहने जे सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभता रवांगी जी तुहाडे नाल। वेल, आई नो इस वेले बहुत सारे लोग जिहड़े ने ना वो अपने कम्मां कारां दी तैयारी च लगे होणगे जी। कोई रसोई च सवेर दी चाह बना रहा होवेगा, कोई बच्चों स्कूल तैयार कर रहा होगा, तो कोई दुकान खोलन की ना तैयारी कर रहा होगा, या फिर कई जड़े ने ना वो अपने कमां वाल जांदिया साडा आकाशवाणी रेडियो सुन रहे होंगे। पर तुसी जिथे भी हो ना जी, अज दी सवेर दे कुछ पल जड़े ने ना वो साडे नाम कर दिओ, क्योंकि हुण जिहड़ा एक घंटा है ना प्रोग्राम सोहनी सवेर दा, सवेरे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक, इस प्रोग्राम च असीं करांगे जी दिल नूं छू लैण वालियां गल्लां, नाल दे नाल तुहानू सुनावांगे सोहणे सोहणे गीत, ते उस दे नाल ही दवांगे इंपोर्टेंट जानकारी जो कि असी तुहाडे नाल शेयर ते करांगे, अगों तुसी भी शेयर करोगे होर लोकां दे नाल। ते फिर किस गल दा इंतजार है जी, करदे आ प्रोग्राम सोहणी सवेर दा आगाज़ गुरदास मान, मास्टर सलीम, जसपिंदर दी इस गीत दे नाल। लो जी, इंजॉय करो।

और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूं तो जो भाषा मुझे वहां के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पद बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी 7वीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी

0: सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री होने तुसी सुन रहे सी देश दे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दा देशवासियां नू दित्ता संदेश हिंदी दिवस दे इस खास मौके ते। बिल्कुल जी, भाषा जिहड़ी है ना उह सिर्फ बोलन दा जरिया नहीं हुंदी, इह साडे जज्बातां ते साडी पहचान नाल ही जुड़ी हुंदी है। साडे देश दी खूबसूरती है कि इत्थे कई भाषावां, कई बोलियां ते कई सभ्याचार ने, पर इह सारियां मिलके ना साडे भारत नूं होर वी सोहणा बनांदियां ने। हिंदी वी जेकर असी गल करिए ते हिंदी वी साडे देश दी इक अहम भाषा है जिसनूं देश दे कई हिस्सों में करोड़ों लोग जिहड़े ने ना अपनी गलबात ते अपनी जज्बात जिहड़े ने इस दे जरिए सांझे करदे ने, इस नूं वरतदे ने। ते जदों गल भाषा ते अगे वध के देश दी आउंदी है ना, तां फिर दिल विच इक वखरा ही जज्बा जिहड़ा ना उजाग पैंदा है। एक ऐसा जज्बा जिहड़ा सानूं साडियां वख-वख बोलियां, रंगां ते रिवाजां तों उपर चुक के एक गल आखदा है कि असी वखरे हो सकते हैं, पर देश जिहड़ा ना उह साडा इक है। ते इसे सोहणे जज्बे नूं अपने नाल लैके सुणदे हां जी हुण इक प्यारा जिहा देश भगती दा गीत।

वाह जी वाह, बड़ा सोहना गीत देश भगती का तुसी इंजॉय कर रहे सी, प्रोग्राम चल रहा है सोहनी सवेर, तुसी इस प्रोग्राम नू सुन रहे हो अपनी दोस्त शुभिता दे नाल। ते कई बार ना जी किसी भी चंगी शुरुआत तो पहला ना दिल विच इक्को गल हुंदी है कि रब मेहर करे, काम जिहड़ा ना असी करन जा रहे हां उस सिरे चढ़ जाए, ते नाल दे नाल जिहड़ी भी कोई मुसीबत है या कोई विघन है ना वह दूर हो जाए। ते गणेश जी जिहड़े ने ना उन्हां नूं भी इसे लई विघन हरता यानी हर रुकावट दूर करन वाले भगवान मन्या जांदा है। भारतीय परंपरा की जेकर असी गल करिए तो इस विच किसी भी शुभ काम की जिहड़ी शुरुआत

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

प्रोग्राम सोनी सवेर आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता जी तुहाडे नाल अज जी 14 सितंबर ते जेकर अज दे दिन दी असी गल करी ते अज दा दिन बड़ा ही खास है। जिवें हर दिन जिहड़ा है ओह अपने नाल कोई ना कोई इतिहास कहानी लेके आंदा है, ठीक इसे तरह अज दे दिन नाल जुड़ियां भी कुछ खास घटनावां कुछ खास दिन जिहड़े ने उस बारे तुहानू जानकारी दिंदे आ। गल करिए अज दे दिन दी ते 14 सितंबर दा जिहड़ा दिन है ना ओह भाषा दे पक्खों बहुत खास है जी, क्योंकि अज दे दिन जिवें असी पहलां भी तुहानू जानकारी दित्ती कि भारत विच हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर सन 1949 च संविधान सभा ने हिंदी नू जिहड़ा है ना ओह देवनागरी लिपि विच संघ दी राजसभा वजों स्वीकार किया सी। इसे याद विच जी हर साल अज दे दिन जिहड़ा हिंदी दिवस वजों मनाया जांदा है। हिंदी सिर्फ ना एक भाषा नहीं है सगो भारत दी साहित्यक अते सभ्याचारक विरासत दा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस दिन जिहड़ा ना स्कूलां कॉलेजां ते कई जिहड़े सरकारी जिहड़े संस्थान ने उहनां विच जिहड़ा है ओह कई प्रोग्राम जिहड़े ने वख-वख तरहां दे कराए जांदे ने। ते दिलचस्प फैक्ट जिहड़ा ना इस दिन दे नाल जुड़िया ओह वी तुसीं जाण लओ कि हिंदी शब्द दा जिहड़ा संबंध है ना ओह सिंधु शब्द नाल जोड़िया जांदा है। समय दे नाल सिंधु ते हिंद अते फिर हिंदी शब्द जिहड़ा ना ओह बणिया, मतलब कि इस एक शब्द दे पिछे भारत दे पुरातन इतिहास दी एक लंबी जिहड़ी कहानी है ना ओह जुड़ी हुई है। इस दे नाल नाल जेकर हुण असीं बाकी इतिहास दे पन्नियां वल चलीए ते 2016 दी जेकर असीं गल करिए ते रियो पैरालंपिक खेडां विच भारत ने ना इस विच शानदार प्रदर्शन करदिआं कुल 4 तमगे 2016 च 2 सोने ते 1 चांदी अते 1 कांसी दा तमगा जिहड़ा जित्तिआ सी। उस समय पैरालंपिक खेडां विच भारत दा सब तों वधिया प्रदर्शन सी। इस दे नाल ही 14 सितंबर यानी कि अज दे दिन साल 2008 नूं रूस दे परम शहर नेड़े दस्या जांदा एक दर्दनाक हादसा होया सी। 2007 दी जेकर असीं गल करिए ते विज्ञान अते पुलाड़ दी दुनिया लई इह सब तों वड्डा दिन सी जी, क्योंकि इस दिन जापान ने अपना चंद्रमा खोज मिशन कागुआ जिहड़ा ना ओह पुलाड़ विखे भेजिआ सी। इस दे नाल ही साल 2000

वाह जी वाह, प्रोग्राम दे विच इस गीत ने ना चार चांद लगा देते। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम सोनी सवेर च होने वाली है जी, मौसम की जानकारी देने की। कहते हैं ना कि मौसम भी कितने ना कितने जिहड़ा ना वो साडा मूड तय कर देता है। सवेर की हल्की जी ठंडक तो जिहड़े बदल जेकर छाए होन ना सवेरे सवेरे, तो फिर लगन लग पैंदा कि वाकई अज का जिहड़ा दिन है ना वो कितने ना कितने खुशी खुशी असीं कढ़ांगे, क्योंकि गर्मी जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा सी। तो कल की जेकर असीं गल करिए ना, तो पंजाब च मौसम ने खूब रंग दिखाए। सवेरे गर्मी ते बाद चो चंडीगढ़ तो शुरू हुई बारिश ने मोहाली, उस तो बाद जलंधर अमृतसर इन्हां एरियाज़ दे विच ना कितने कितने मौसम बदलिया तो लोगों नूं राहत मिली। तो जेकर हुण अगे असीं गल करिए कि मौसम पंजाब च किवें रहण वाला है, अज दस्या जा रहा है जी कि अज पंजाब दे कई जिलों विच ना बारिश का अलर्ट मौसम विभाग वालों जताया गया। कुल मिला के कहा जा रहा है 16 जिले च बारिश के आसार ने, तो चंडीगढ़ विच भी कहा जा रहा है कि बदल जिहड़े ने छाए रहणगे, तो कितें ना कितें एक बार फिर जिहड़ा ना पंजाब च मानसून वो एक्टिव हो गया है, तो जिहदे नाल लोगों नूं गर्मी तो राहत मिली है। हाले पंजाब के कई जिले अज भी बारिश का अलर्ट है, तो वो तुसी जी अपना जेकर तुसी कितें बाहर निकलन का प्लान कर रहे हो तो तुसी इन्हां थोड़ी सावधानी जिहड़ी जरूर वरत लेनी है। सफर ले निकल रहे हो तो थोड़ी जी जिहड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि बाकी मौसम भावें जिवें दा भी रहे जी, साडी कोशिश है कि सोहनी सवेर का जिहड़ा सफर है ना वो तुहाडे लई असीं हमेशा सोहना बनाए रखिए। ठीक, हुण जिहड़ा अगला गीत है उस दे तरह लो जी, सुखविंदर शिंदा, सुखशिंदर शिंदा, राहत फतेह अली खान की आवाज़, इंजॉय करो ये गीत।

वाह जी वाह, बहुत सोहना गीत तुसी इंजॉय कर रहे सी। प्रोग्राम सोहनी सवीर चल रहा है ते मैं तुहाडी दोस्त शुभिता जी इस प्रोग्राम च तुहाडे नाल। हुण प्रोग्राम च गल करदे हां जी एक बहुत इंपॉर्टेंट तुहाडे नाल एक टिप कह लो तुसी तुहाडे नाल सांझी करनी है ते खास करके साडीआं जिहड़ीआं भैणां ने धीआं ने उहनां सारिआं लई इह जिहड़ी गल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज़ाना कई बार असी कॉस्मैटिक्स दी जिहड़ी है ना वरतों करदे हां ते अजकल चाहे उह लिपस्टिक होवे काजल होवे फाउंडेशन या फिर फेस क्रीम या फिर सनस्क्रीन होवे इह चीज़ां जिहड़ीआं ने ना उह साडी रोज़ाना जिंदगी दा एक हिस्सा बन चुकीआं ने पर हर चमक दा पैकेट असली नहीं हुंदा जी। एक ताज़ा लोकल सर्कल सर्वे मुताबक किया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में जो है ना कॉस्मेटिक्स खरीदने वाले लोगों में 40% लोगों ने दसिया है कि उन्होंने घट्टो घट एक नकली या फिर काउंटरफिट ब्यूटी प्रोडक्ट मिलिया तो 26% लोगों ने किसी ना किसी कॉस्मैटिक नाल एलर्जी होने की भी गल दसी है। हुण सोचो जी कि असी कई बार सिर्फ यह वेखते हैं कि चीज़ जी है ना सस्ती मिल रही है पैकेजिंग बिल्कुल असली वर्गी लग रही है पर स्किन पर लाने वाली जी चीज़ है ना वो सिर्फ पैकिंग नहीं उसकी क्वालिटी ते असली होना सब तो ज़्यादा जरूरी होंगे खास तौर पर कई बार हम अजकल असी डिजिटलाइजेशन जो ऑलरेडी इस एरा चा तो खास करके इस वेले असी ऑनलाइन खरीददारी कर लेने तो इस समय तुम बहुत ज़्यादा जोड़ा वो ध्यान रखना जेकर तुम्हें लग रहा है तुहाडी स्किन ते रिएक्ट कर रहे हो कोई भी कॉस्मैटिक चीज़ जी है तो उन्होंने अवॉइड करो डॉक्टर की सलाह लो क्योंकि जी सुंदर दिखना तो चंगी गल है पर सुंदरता तो पहला अपनी सेहत तो अपनी स्किन का जोड़ा ख्याल रखना ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे क्योंकि खास तौर पर गल साड़ी ब्यूटी दी है तो आज दा यही छोटे जा जड़ा मैसेज है टिप दे नाल नाल कि ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदन वेले सिर्फ डिस्काउंट नहीं देखना प्रोडक्ट दी असलियत भी

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के

0: सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
2: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
3: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले

0: भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister.

0: जा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी को जाओ, जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल, जा मोबाइल नंबर राही, जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही, जा पत्र राही उसकी स्वैग घोषणा करो। ते जेकर कोई बदलाव है ता पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दिखाओ, खाता कार्यशील रखो अते बैंकिंग सेवावां दा लाभ उठाओ। अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
1: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो सुचेत रहो।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: प्रोग्राम महक पंजाब दी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनान जा रहे हैं फिल्म सरदार जी चू दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत।

श्रीलंका नूं 72 नाल हरा के महिला एशिया कप 2026 दा खिताब जीत लिया है। ऐसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप ते वेव्स ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज दी घड़ी मुताबक सवेर दे 9:02 हो रहे ने ते हुण पेश करन जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार डॉक्टर ज्योति मित्तू पासों सितार वादन ते राग जौनपुरी सुनोगे ते इस च उनां दे नाल तबले ते संगत कर रहे ने जगमोहन सिंह।

तुसी सुन रहे सी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। इस च अज तुसी कलाकार डॉक्टर ज्योति मित्तू पासो सितार वादन ते राग जौनपुरी सुनिया। ते इस च उन्हां नाल तबले ते संगत कर रहे सी जगमोहन सिंह जी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप ते वेव्स ऐप ते भी सुन सकते हो। हुन पेश करन जा रहे हैं गजला। गजला सिर्फ सुनिया नहीं जांदियां, गजला ता महसूस कीतियां जांदियां ने। इस दे जिहड़े बोल ने जो दिल नूं छू जान ता कई बार ओ गल भी कह जांदे ने जो असी खुद शब्दां विच नहीं कह पाते। ता फिर आओ अज दे इस खूबसूरत गजलां दे सफर दी शुरुआत करदे हां उस आवाज दे नाल जिस दी मिठास अज भी दिलां विच बसदी है। गल कर रहे हां जगजीत सिंह जी दी सुरीली आवाज दी। जिंदगी दे रंग, इस दे उतार चढ़ाव ते इस नूं जीण दे एहसास नूं अपने अंदाज विच बयां करदी एक खूबसूरत गजल सुनो जी।

चंदन दास जी की आवाज से तुसी सुन रहे सी दिल नु छू लेन वाली गजल। ते कहंदे ने कि कुछ रिश्तियां दी खूबसूरती शायद इस गल विच हुंदी है कि उन्हां नु बयान करन लई बहुत सारे शब्दां दी लोड़ नहीं पैंदी, किसी भी नेड़ता ही काफ़ी हुंदी है दिल नु सकून देन लई। ते कई बार कोई साढ़े इन्ना करीब हुंदा है कि उसकी मौजूदगी साड़ी जिंदगी का सब तो खूबसूरत एहसास बन जाती है। इसे नेड़ता, इसे मुहब्बत ते दिल दे अनगए जज्बातों नू बड़ी खूबसूरती नाल आवाज देंदे ने पंकज उदास जी। तो फिर आओ सुनते हैं पंकज उदास जी की एक बेहद खूबसूरत गजल।

पंकज उदास जी की आवाज से तुसी सुन रहे सी दिल नूं छू लैण वाली गजल। ते गजलां दी खूबसूरती ही इही है, जो मन दे भाव ने उहनां नूं शब्दां राही जो है इस गजलां जिहड़ियां ने उह प्रगटा दिंदियां ने। ते अगली गजल चित्रा सिंह की आवाज़ सुनो।

आप पहुंचे हैं इस खूबसूरत गजलानी महफिल की आखिरी पेशकश वाल। कुछ लोग ना साडे जिंदगी विच दूर तो चल जाते हैं, पर उन्होंने उड़ीक दिल विच किते ना किते रह जाती है। वक्त लंघता रहता है, यादा भी पुरानिया हो जाती ने, पर दिल फिर भी यही पुछता है कदों वापस आएंगे। इसी उड़ीक इसे तनहाई ते इसे अनकही दर्द में अपनी बेमिसाल आवाज विच बयान करते ने गजल दे बादशाह गुलाम अली साहब। तो आओ इस महफिल की आखिरी गजल में भी पूरे दिल नाल महसूस करिए ते सुनिए गुलाम अली साहब की आवाज़ च एक गजल।

0: बिल्कुल जी, प्रोग्राम हेलो फरमाइश फोन के पास भी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो बैठे होंगे। बिल्कुल जी, साढ़े कई सारे लिसनर्स इस वेले इस गीत की तरह ही फोन दे नाल ही जो है वो होंगे, क्योंकि उन्होंने फोन नंबर डायल करना है 0181-3142-173 यह नंबर डायल करके प्रोग्राम च शिरकत करनी है। तो वेल हूँ जानते हैं कि सब तो पहली फरमाइश प्रोग्राम च कौन लेके आए ने। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं महेंद्र सिंह, पिंड हर रायपुर, पिन कौनी, जिला बठिंडा जी।
0: बठिंडा तो कॉल की, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा।
1: ठीक है जी।
0: हाँ जी, होर की हाल चाल ने?
1: हाँ ठीक है जी, ठीक ठाक जी।
0: ठीक है जी, किन्ने दिनों बाद कॉल लगी थोड़ी?
1: एक कॉल 3 साल हो गए, 3-4 साल। उदो मुंडे का नाम सी वीरिंदर।
0: अच्छा जी। बहुत खुश हो गए। हां जी, फिर इस खुशी च गीत केड़ा सुनना तुसी?
1: वीर फिल्म दा कोई सुना दे जी।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दे तुहाडी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
1: ठीक है जी,
0: धन्यवाद जी। लो जी, धर्मवीर फिल्म चो मोहम्मद रफी ते मुकेश की आवाज च गीत इंजॉय करो ते प्रोग्राम च शिरकत करो। 0181-3142-173 नंबर डायल करो, शिरकत करो ते अपने मनपसंदीदा गीत सुनो।

0: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे ना

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, हेलो फरमाइश। तो इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता जी तुहाडे नाल आउ जानते हैं। हुन अगली कॉल किना दी आई है। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: गुरदास बोलदा जी, पिंड कट्टे वाली जत्ता जिला फाजिलका।
0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा। किन्ने दिन बाद कॉल मिली फिर?
1: दिल वाले फलों दा कोई सुनावे।
0: अच्छा जी, सिद्धा ही दस दिता केड़ा गीत सुनना। मैं पूछा सी कि किन्ने दिन बाद कॉल मिली तुहाडी?
1: हफ्ते के बाद मिली।
0: चलो हफ्ते बाद कॉल मिली है, अपनी फरमाइश भी तुसी दस्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए,
1: धन्यवाद।
0: दिलवाले फिल्म चो कुमार सानू की आवाज करो, एंजॉय।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। आओ जानते हैं प्रोग्राम च हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
2: हलो सत श्री अकाल मैम।
1: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे ने जी?
2: कुलवंत सिंह, पिंड फौजोग, जिला फरोजपुर तो बोल रहे मैम।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा प्रोग्राम च।
2: धन्यवाद मैम, तुसी फोन राही फरोजपुर आए जी।
1: हाँ जी, फरमाइश पूरी करिए। ठीक है जी, मोहम्मद रफी ते लता जी दी आवाज च। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
2: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: होती है लेकिन दुश्मन होती है। बोलो बोलो
1: रात
0: नहीं
1: घात
0: नहीं
1: बरात
0: नहीं
1: निशानी
0: नहीं जवानी।
2: मुकेश ते लता दी आवाज च तुसी इंजॉय कर रहे जी बहुत सोहना जिहा गीत ते प्रोग्राम हलो फरमाइश। असी साढ़े अगले कॉलर कौन ने वह भी जानांगे लेकिन हुण वेला जी एक छोटे जे अंतराल दा। बस मैं हुणी वापस आई एक छोटे जे अंतराल तो बाद तुसी कॉल करते रहना है प्रोग्राम च शिरकत करन दे लई ट्राई करते रहना 0181 2342 173 ए नंबर डायल करना है जी ते प्रोग्राम च तुसी शिरकत करनी है। फिलहाल हुण वेला एक छोटे जे अंतराल दा बस मैं होनी गई ते होनी आई।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: लो जी आ गए हैं असीं वापस प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है ते आओ जानते हैं हुण जिहड़े 15 मिनट बाकी ने इस विच हुण कॉल किन्हां दी आई है किहड़े कॉलर आए ने। हैलो
4: हेलो मैडम जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी।
4: सुखबीर सिंह छाजली बोलता जी संगरूर को।
2: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा।
4: शुक्रिया जी बहुत दिनों बाद अज गल करन दा मौका मिला। काम च बिजी हुंदे जी अज छुट्टी मारी है जी मिस्त्री अज आए नहीं महाचलो अज जलंधर ते पाउंदे हाजरी।
2: बिल्कुल जी चलो अज तुहाडी फिर कॉल लगी है तुसी केड़ा गीत सुनना की फरमाइश है तुहाडी।
4: मैडम जी पिया लागी लगन बस तेरे नाम की ये ला दो जी गाना।
2: ठीक है जी जरूर पूरी कर दिया थोड़ी फरमाइश दाग द फायर फिल्म च ना।
4: ठीक है मैडम जी
2: ठीक है जी ओके जी। लो जी इन्हों की फरमाइश असं पूरी करते हैं तो थोड़ी भी फरमाइश असं पूरी करनी 0181 2342 173 नंबर डायल करो प्रोग्राम च शिरकत अपने मन पसंदीदा गीत सुनो।

0: अनुराधा पोदवाल, जसपिंदर नरूला देवास, जो तुसी सुन रहे से जो गीत आहू चाहते हैं, अगली फरमाइश कौन लेके आए ने? हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: हाँ नमस्कार जी,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं वरिंदर शर्मा बोल रही हूँ, धर्मकोट डिस्ट्रिक्ट मोगा, पंजाब।
0: मोगा तो कॉल लगी है
1: जी। जी,
0: किन्ने दिन बाद कॉल लगी थोड़ी?
1: फर्स्ट टाइम लगी जी, काफी दिन हो गए, मैं प्रोग्राम सारे सुनता वैसे।
0: अच्छा जी, फर्स्ट टाइम तुसी फिर कॉल ट्राई की थी और थोड़ी लग गई, फिर तो लकी डे हो गया आज। रफी साहब की आवाज चाहिए गीत।
2: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई।

होने तुसे सुन रहे से प्रोग्राम हालो फरमाइश मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डीडीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन योर ऐप ते भी सुन सकते हो। हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के

0: 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय से बचाव अभियान जारी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा प्रोटोकॉल और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला टी20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रोग्राम तमक जलंधर बेंदी।

बिल्कुल जी, बहुत सोने सोने गीत थोड़ी फरमाइश बन रहे हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि फरमाइशा बहुत सारी ने साडे सामने। पिंड करेली जरा बरेली तो मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी ते परिवार ते होर बहुत सारे मैंबर। जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो फरमाइश आई मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून होरां दी। गिद्दड़ बहादुर, मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल

नताशा कैरवी तनेजा, पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखीराम जी ते पूजा। इन्हां सब दी फरमाइश दे नाल साडे कोल आ गई अगली फरमाइश बटाला तो रोहित सुमित प्रीति साक्षी बेबी अमिका ते इन्हां दी फरमाइश है जी प्रदीप शिंदा दा गीत सुनना चाहते ने। बिल्कुल जी थोड़ी फरमाइश जरूर पूरी करांगे। फिलहाल साड़ी को फरमाइश आई हुई है कुलदीप मानक होरां दी आवाज़ च एक गीत।

फतेहगढ़ साहब। हरीश प्रिंस मुस्कान प्राची महक तनमीत मनी पीयूष नेहा ते ओम होरा दी इन्हां सब दी फरमाइश ते अगला कीर्तन सुनदे हां सुरिंदर शिंदा दा गाया होया। प्रदीप शिंदा ते सानू नहीं मिले जी, सुरिंदर शिंदा दी आवाज़ तुहाडे लई गीत तुहाडी सब दी फरमाइश।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी जी जलंधर केंद्र से प्रोग्राम चल रहा तमक जलंधर पेंदी। तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम जो थोड़िया व्हाट्सएप ते आईया फरमाइशा पूरी हो रही ने। जलालाबाद वस्तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहो जा हो रहा दी फरमाइश आगे जी। राम सिंह तगड़, पिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत सिंह तगड़ दोबारा आ गए ने जी। इन जी अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्मीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजाल मलिक, कोल सिटी बरखा काना तो, अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम मिश्रत अकरम, वसीम अकरम ते रुबेना वसीम, सुधीर मलिक पेंड बागपुर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, मन्नत जन्नत भाविक मलिक सरदूल सिकंदर जी का गाना सुनना चाहते ने जी। वाघा बॉर्डर अटारी जिला अमृतसर तो जसपाल सिंह, कुलदीप कौर, निर्मल सिंह टिंका, गुरबख्श सिंह, हरमनवीर सिंह, मेहरदीप कौर ते सोनू अटारी। इन्हें दी फरमाइश है जी दिलशाद अख्तर की आवाज़ जो कोई भी गीत। बिल्कुल जी, जरूर फरमाइश पूरी करांगे। फिलहाल थोड़ी फरमाइश का एक गाना अमरिंदर गिल की आवाज़ थोड़े सारे लिए।

लॉजी अमरिंदर गिल तो बाद आगे सानू फिरोज खान ते सरदूल सिकंदर दी आवाज च फरमाइश सुन वाले ने लक्षणपुर छत्तीसगढ़ तो विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति साहू ते कुंती साहू हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया सोनू भाटिया पप्पी भाटिया तमन्ना भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर तो फिल्म ने जी सिद्धार्थ गुंडानी अर्चना ताई गुंडानी हिरामन शेंडे जी प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गुंडानी ऑक्सीजन बारकर राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र तो अगे जी रमी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल हैबोवाल कला हल्का उत्तरी जिला लुधियाना पंजाब तो गिद्दे विच मैं नचदी ते मेरे खेतां विच नचदी बहार गायक ने जी सरदूल सिकंदर ते बीबा अमर नूरी जी एल्बम बिल्कुल जी ए फरमाइश जरूर पूरी करांगे फिलहाल थोड़े लिए आने वाला है फिरोज खान ते सरदूल सिकंदर दा गाया ही ए गीत ते यादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह जी फ्रॉम कोटली कला तमक जलंधर पेंदी च सानू अगली फरमाइश पिंड फुलो मिठे जिला बठिंडा तो राम सिंह टेलर लक्ष्मण सिंह टेलर कुलजिंदर सिंह मनप्रीत कौर जसप्रीत सिंह माता जल कौर ते पोत्रा गुणताज वीर सिंह जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी ते रियाज रिफाकत मोहम्मद रेहान समीन परवीन ते माहिरा नूर थोड़ी सब दी फरमाइश ते प्रोग्राम दा अगला गीत सरदूल

दलजीत दोसांझ तुम्हार अगली आवाज थोड़ी ले आ रही है कंठ कलेर हो रहा दी थोड़ी फरमाइश है जी इस गीत ली अवतार सिंह लाली जसविंदर सिंह जनरल सिंह नाली जोगिंदर सिंगापुरिया डिंपल टिफाना मोहाली हरजीत हरमन का कोई भी गीत सुनना चाहते ने बिल्कुल जी जे हुण प्रोग्राम दा आखरी गीत है जी हरजीत हरमन दा कोई भी गीत तुसी अगली फरमाइश दे विच कल दे प्रोग्राम च सुन सकते हो सेफ वाटर सेफ लाइफ ए जी हमेशा स्लोगन हुंदा है इना दी फरमाइश दे विच मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान अनाज नवाज शेख दानिश शेख अमन अफरीदी ते राधा नाम देव रेडियो जलंधर तो सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सनी मनी काका जनक नगर जलंधर तो नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल निशा तुलसी ते देशा गोस्वामी रामपाल शर्मा फिरोजपुर तो आशा नारंग सोनाली नारंग ते सुरेश नारंग सहारनपुर तो पिंड तंगौरी जिला साहिबजादा अजीत नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगौरी ते जसबीर कौर तमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम च पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी होरां दी फरमाइश रमेश बिल्ला चावला पिंड तेड़ा खाना खोया सरवर तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो मनीना फिलिपीन तो मदन मोहन लहर सरबजीत लहर संजू लहर नीतिका लहर अजय लहर इंजल लहर ते अर्नव लहर काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र तो मास्टर विठल सुरेशे सुषमा सुरेशे परिधि सुरोशे ते मायरा सुरोशे थोड़ी सब दी फरमाइश ते प्रोग्राम दा आखरी गीत सुनते हैं कंठ कलेर दा गाया होया

0: ਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਓ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि

0: समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ऐसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेशे पारिवारिक प्रोग्राम वास्ते वेड़ी।

0: राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित तीन कानून बनाए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। इसकी सातवीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: सो जी, ए सन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्हों तो असी संदेश सुन रहे सी कि साड़ी जड़ी हिंदी राष्ट्रभाषा है उदा की महत्व है ना जी।
2: जी ते प्रभजोत जी, महत्व ते जेखो अपनी मां बोली दा हमेशा ही हुंदा। आपा हिंदी राष्ट्रभाषा दी गल करिए ते साडे सारे देश दी है भाषा, इक साडी पहचान है। ते ए जिहड़ा खास दिन मनाया जांदा ना, ए इसे पिछे मनाया जांदा है कि असी अपने आप नू, अपनी अगली जनरेशन नू इस चीज दे नाल जोड़िए।
1: बिल्कुल जी, और देखो हिंदी बोलन दे विच सानू पूरा पूरा माण होना चाहिए कि असी हिंदी राष्ट्रभाषा दे बशिंदे हाँ, असी इत्थे रहने हाँ, है ना। और देखो ये बहुत ही वड्डी है, क्योंकि देखो जिन्ना साहित्य प्रफुल्लित होया वह भी हिंदी दे नाल ही प्रफुल्लित होया।
2: बिल्कुल,
1: जिन्ने साहित्यकार होए ने, चाहे कोई भी साहित्यकार लै लो, भारतेंदु लै लो, जड़े मर्जी साहित्यकार लै लो, सारे ही इस नाल विकसित हुई है साड़ी भाषा जड़ी है, होर विकसित हुई है।
2: ते साडे देश दा बहुत मान वध्या है, ते साडे देश नू हिंदुस्तान भी ते कहा जांदा है ना। ते ओदे ते अगर आपां उस नाम तो ही लै लईए ते हिंदी किन्नी इंपोर्टेंट है, इहदी किन्नी महत्ता है, सानू इसे गल तो समझ ही जा जांदी
1: है। बिल्कुल बिल्कुल।
2: ते असी इसे गल नू अगे वधांदे होए
1: जी,
2: असी अपना सुषमा गुप्ता उन्हां नाल कीती होई गलबात सुनदे हां हिंदी दिवस दी महत्ता।
1: बिल्कुल जी, असी सुणांगे और असी ए उन्हां तों जाणांगे कि सुषमा गुप्ता जी ने सानू की दस्या। इन्हां नाल गलबात पूनम होना ने कीती है, पर गल ए है कि जिहड़ी हिंदी साडी भाषा है ना, इहनू असी बड़े ही प्यार दे नाल संजो के

0: जी
1: पर मोटे तौर ते देखिए सारे राष्ट्र दे विच जड़ी एक भाषा है वह आपस च जोड़ती है लोगों को, चाहे तुसी उत्तर तो दक्षिण वाल चले जाओ, पश्चिम पूर्व चले जाओ, पूर्व तो पश्चिम चले जाओ, एक भाषा है जिहड़ी पूरे राष्ट्र नूं जोड़दी है। इसी करके इहनूं असीं राष्ट्र भाषा भी कहिंदे आ ते संपर्क भाषा भी कहिंदे आ। मैनूं बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मैनूं ना दक्षिण भारत च बहुत ज़्यादा जाण दा मौका मिलिया, मेरे बच्चे पढ़दे सीगे, मैनूं ज़्यादातर जाना नसीब हुंदा सीगा। अच्छा जदों मैं जांदी रही ना, मैं उत्थे देखी एक चीज़, वो कन्वरसेशन करदे होए जदों मेरे नाल गलबात करदे सीगे ना, बेशक वो अंग्रेजी च बोलदे सीगे पर इधरों मैं हिंदी च बोलती सी, समझते सी। अच्छा वड्डी गल जिहड़ी

0: जी बहुत प्यारा गीत सी। तो इस गीत दे नाल हुन वेला हो गया है कापी पेन दे यूज़ दा,
1: जी
0: क्योंकि अज है सोमवार ते सोमवार नूं हुंदा है पकवान। ते साडी हमेशा ये कोशिश हुंदी कि पकवान दे तहत कोई ऐसी रेसिपी, कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिहड़ी सारिआं लई हैल्दी होए, बजुर्गां लई, बच्चिआं लई, सारिआं नूं फायदा करे। ते अज जिहड़ा खास पकवान लै के आए ने प्रभजोत जी, सुनदे उहनां तों की लै के आए ने।
1: बिल्कुल जी, क्योंकि पौष्टिक महीना चल रहा है, पूरा
0: जी
1: दा पूरा असी समर्पित।

0: लूँ।
1: अच्छा, उस तो बाद करने में
2: जी ब्लेंड असी जो ठंडा हो गया उस तो बाद ब्लेंड करने, क्योंकि देखो जे घर विच बुजुर्ग ने असी गल्ला करदे आ के बुजुर्ग भी हुंदे ने, तुसी उन्हां नूं ए जड़ा है ग्रेवी वाला पनीर बना के दे सकदे हो, और जे घर विच बच्चे ने छोटे और जे ओ जिद करदे ने कि सानू नहीं जी सानू तां मसाले वाला पनीर ही चाहिदा ते असी ओ हुण मसाला भी दसांगे। सो एक ग्रेवी बन गई ग्रेवी पासे रख लो, और हुण मैं तुहानू दसदी आ कि जिहड़ा मसाला बनाना है जिहड़ा असी पनीर मैरीनेट करके रखे है ओहदे विच पान वास्ते। एक कढ़ाई दे विच तुसी मक्खन लै लो, मक्खन जिहड़ा ओह तुसी अपने अनुसार लै लो 506 चम्मच वड्डे, ओहनू मेल्ट होण दिओ, और ओहदे नाल ही तुसी तेज पत्ता, छोटे छोटे किते हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस दे नाल ही तुसी जिहड़ी है इहदे विच तुसी हल्दी जिहड़ी है ओह जरूर पानी है, अद्धा कु चम्मच हल्दी, और जीरा, जीरा जिहड़ा है ओह तुसी जदों बटर गर्म कर रहे हो उदों नाल पाणा है जी, बिल्कुल उदों नाल पाणा है
1: ताकि ओह तिड़क जाए ओहदे विच,
2: बिल्कुल जी है ना, और जीरा पा के इहदे विच थोड़ी जी हल्दी, गरम मसाला ते टमाटर, छोटे छोटे कट्टे हुए टमाटर जिहड़े ने ओह पा देने हैं, और देखो ये जड़ा है बड़ा ही प्यारा जा एक कलर देगा और मसाला तैयार हो गया। ठीक है, उधर तुहाडा जड़ा चीज़ है वह मैरीनेट हो चुका है, और तुसी जड़े चीज़ है उन्हें मैरीनेट करन कर लिया, और उस तो बाद एक कढ़ाई दे विच जा एक पैन दे विच रख के थोड़ा जा हल्का जा घ्यो पा के ओनू तुसी सौटे कर लेना, ओनू तुसी गरम कर लेना, ताकि हाँ ताकि ओदा टेस्ट जड़ा ओदा फ्लेवर जड़ा एक जिवें कहंदे ने तंदूर दे विच बनया होया पनीर ओ फ्लेवर आएगा,
1: नाले कच्चा पन निकल जाएगा
2: जी, बिल्कुल कच्चा पन निकल जाएगा, ओनू उस तरह एक एक पीस चुकदे जाना और ओनू ओदे विच रख के ओनू पलट लेना है, क्योंकि सब दे घर च ओवन नहीं हुंदा, सब दे घर च एयर फ्रायर भी नहीं हुंदा, इस करके मैं तुहानू दस रही हां कि तुसी ओनू ओदे विच
1: शैलो फ्राई कर लो,
2: नहीं हाँ शैलो फ्राई कर लो तुसी, बिल्कुल एक प्लेन फ्राई पैन दे विच लैके ओनू शैलो फ्राई कर लो, और ये सारा पनीर जिहड़ा है ये जो तुसी कर लिया किसी भी जड़ी डिश है जिदे च तुसी सर्व करना है ओदे विच चको, और तुसी ये जड़ा अपना बटर वाला मसाला बनाया ओदे विच तुसी ये पा दो। ये तो बन गया बच्चों वास्ते, ठीक है, ये बड़ा ही प्यारा उपर हरा धनिया सजा सकते हो तुसी, बड़ा ही प्यारा तुहानू एक फ्लेवर देगा, एक बहुत अच्छी डिश जड़ी है वह तैयार होगी, और हाँ तुसी जे ये क्योंकि ड्राई डिश है ना, और इनू तुसी जे तुहाडे कोल सीखा है घर दे विच ते ओदे नाल भी तुसी इनू एक एक बटर लगाए चलो, शिमला मिर्च लगा लो, फिर एक टमाटर लगा लो, और जे तुसी उनू सेक्या होया ते लगा सकदे हो, नहीं तो इस तरह भी तुसी सर्व जिहड़ा ओ कर सकदे हो,
1: ते अलग ही ब्यूटी बन जाएगी जदों असी सीख इस लगा के,
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि गेस्ट आन ते बहुत चंगा लगेगा,
2: हाँ बहुत अच्छा लगेगा, और हुण यही पनीर जिहड़ा है जे तो असी असी मतलब ग्रेवी वाला बनाना है, जिहड़ी असी ग्रेवी तैयार कीती सी ना टमाटरां दी, असी चंगी तरह ब्लेंड कर ली, और ओहदा भी एक डिफरेंट कलर आ गया, और ओहदे विच भी असी नमक पाया, इधर भी साडे कोल नमक है, नमक जिहड़ा है हमेशा तुसी अपने स्वाद अनुसार पाना है, और नमक जिहड़ा हमेशा अखीर दे विच ही पाना है, क्योंकि नमक जिहड़ा है ओह पानी जरूर छड्डदा अपना। हुण जिहड़ा अपना चीज़ तैयार किया पनीर तैयार किया होया इहनू चुक के तुसी अपने मसाले दे विच जिहड़ा ब्लेंड किया होया ओह इक अलग डिश बन गई, ये बटर टिक्का मसाला जिहड़ी है एक अलग डिश बन गई,
1: मतलब असी ये पनीर नू तैयार करके दो डिश बना सकते हैं, ओह भी बना लो ते ओह भी बना लो,
2: बिल्कुल
1: इंज लगेगा अलग अलग चीज है,
2: बिल्कुल तुहानू मैं दो डिशेज दस दित्तियां पनीर दियां। सो जी ये हुण आपां सुनण वालियां नू पुछांगे, सानू चिट्ठियां जरूर लिख के भेजो कि तुहानू ये जिहड़ी डिश है किदां दी लगी, और तुसी घर बनाई जां नहीं बनाई, क्योंकि देखो सारा समान घर दे विच हुंदा है, और असी बड़े आराम दे नाल ये डिश जिहड़ी है तैयार कर सकदे हां, थोड़ी जिही मेहनत जिहड़ी है ओह जरूर करनी पेगी
1: जी। प्रभजोत जी ਪਹਿਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਖਾਣ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਟੇਸਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੋਏਗੀ
2: ਜੀ,
1: ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਮਲ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਮਲ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
1: ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਜੂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ,
2: ਅਤੇ
1: ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਜੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਜੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਤੁਸੀਂ

0: ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
1: ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਵ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ
0: ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਨਮਸਕਾਰ
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇੜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਚ
3: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
4: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश

0: भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तुम बोल रहे हैं।

0: जी फौजी ब्यूरो प्रोग्राम जारी रहेगा पर वेला हो रहा खबर का 1:40 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुनो कि पंजाबी च खबर तो 1:50 हो दिल्ली तो उर्दू च खबर उस तो बाद मिलेंगे 2 प्रोग्राम लेके दोबारा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: 2025 में नुमाया कमी आई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले यकसां सिविल कोड यूसीसी नाफिज करेंगी। मुंबई में नामनिगारों से बात करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि कई रियासतों में यूसीसी नाफिज कर दिया गया है और उन्हें पूरा एतमाद है कि इसे 2029 से पहले बीजेपी और एनडीए की सरकार वाली 21 रियासतों में नाफिज कर दिया जाएगा। जनाब अमित शाह ने कहा कि तलाक सलासा यानी एक साथ तीन तलाक के सिलसिले को खत्म करके मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के जरिए मुल्क के फौजदारी अदलिया निजाम को मजबूत बनाया है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली में मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि आज शाम हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में बहुत शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के तनाजुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और सूरत समेत 19 जिलों में इस वक्त येलो अलर्ट है। यहां तेज बारिश के साथ साथ 41 से 61 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। इस दौरान बनासकांठा, पाटन, कच्छ, द्वारका और पोरबंदर में औसत बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। मकामी हुकाम ने कहा है कि खास तौर से अहमदाबाद और बड़े शहरी इलाकों में शदीद बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर पानी भरने और ट्रैफिक मुतासिर होने का इम्कान है। अहमदाबाद से हर्षल पांड्या की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की जन्म की याद में मनाया जाता है, जो दानिशमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह 10 दिन तक चलने वाली तकरीबात का आगाज हो गया है। इस मौके पर लोग मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में लाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। नामनिगारों से बात करते हुए जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि गणेश चतुर्थी के पवित्र मौके पर राजस्थान से बीजेपी को हौसला अफजा नतीजे मिल रहे हैं।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। गणेश चतुर्थी के दिन हमें राजस्थान से भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने यूएस ओपन टेनिस का मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। उन्होंने कल रात न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7 और 6-2 से हरा दिया। इस साल ज़ेवरेव का ये दूसरा बड़ा टाइटल है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता था। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में नुमाया कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ।

दुश्मन फिल्म देखी तो बाद हम संध्या फिल्म परफाना चलिया के गीत आशा भोसले ते मोहम्मद रफी दी आवाज़ अच्छा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: इस दे नाल ही फौज ब्यूरो अज दा प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा है।

0: ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक

0: राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अनुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता

0: उपलब्धता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ऐसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली धरती, रंगली धरती।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: अगला लोक गीत सुनते हैं नरेंद्र बीबा ते फकीर सिंह फकीर की आवाज़।

0: रंगली धरती प्रोग्राम तहत तुसी सुन रहे सी नरेंद्र बीबा दे गाए लोकगीत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हैं। दोपहर दे 3 बज रहे ने। साड़ी अज दी इस सभा दे प्रोग्राम हुण खत्म हुंदे ने। दूजी सभा दे प्रोग्राम लेके शाम 4 बजे थोड़ी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। उदों तक लई इजाजत दिओ।
1: डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। दोपहर दे 3 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

अज सारा देश गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और भावना नाल मना रहा है ते साडे स्रोत पूरी श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जा रहा है ते साडे स्रोतियां नूं गणेश चतुर्थी दीआं बहुत बहुत मुबारकां। ते हुण शुरू करदे हां प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते प्रोग्राम लाके हाजर है ताडी होस्ट आरजे जसविंदर कौर। सारियां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। ते शुरू आओ पढ़दे हां अपने स्रोतियां दीआं प्यारियां प्यारियां चिट्ठियां जिहड़ियां कि उहनां दे पंजाबी गीतां दीआं फरमाइशां नाल भरियां होईआं ने। लओ जी असीं पहलियां चिट्ठियां दी शुरुआत करदे हां। साडे कोल पहली चिट्ठी आई है जी गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका थांदी, बेबी वाणी थांदी। ये सानू चिट्ठी लिख रहे हैं पिंड टोरोवाल जिला नवां शहर पंजाब तो। अगली चिट्ठी साडे कोल आई पिंड कुड़ियाणा मंडी अरनीवाला तो बाबा तरलोक सिंह सुखना, दोता शिवजोत सिंह, पिंड जंडवाला खरता फाजिलका तो लिख रहे हैं जी देव खरते वाला, रोमी सोमी ते दोस्त भोला सुहाग, बलतेज सिंह। अगली चिट्ठी पिंड नथाना जिला बठिंडा तो सानू लिख रहा हरजिंदर शिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो चिट्ठी पहुंची है साढ़े कोल सोन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, राज मिस्त्री पिंड माहुआणा बोदला ढाणी नेड़े थाना अरनीवाला तो सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर बूक ते नू रीना बाई। ते अगली चिट्ठी साढ़े कोल आई आ पिंड फिरोजपुर नवांशहर तो जगजीत सिंह शेरगिल, राजविंदर कौर शेरगिल, चाहल कलां नवांशहर तो अमरजीत सिंह बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा ते कुलविंदर कौर बंगा। ते लो जी इन्हां सारियां दी फरमाइश ते तुहानूं सुनाण जा रहे हैं। इन्हां ने कहा जी सानूं कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। ते इन्हां सारियां दी फरमाइश ते तुहानूं सुनाण जा रहे हैं इस कंग दी आवाज़ दे विच ये प्यारा जिहा पंजाबी गीत।

जी यस, कांग जी ने बिल्कुल सही कहा है जी। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल कदी किसी का दुखायो ना। ये गल बिल्कुल सही है जी। सानू किसी दे कोई दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी नू कोई एहोजे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिहदे नाल अगले बंदे का मूड खराब होवे। ठीक है जी, असी प्यारिया प्यारिया चिट्ठियां पढ़िया तो वधिया वधिया इहदे च संदेश लिखे हुंदे आ, वधिया वधिया गाणियां दी फरमाइशां आंदियां आ। तो अपना खुश माहौल रखना चाहिए है, तो अपना नेचर भी वधिया रखना चाहता है। इस दे नाल ही साडे कोल अगलिया चिट्ठियां आईयां जी। पिंड घुबाया तहसील जलालाबाद जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिख रहे पप्पू मुनीम अमरोबाई राजू फौजी हरप्रीत कौर बलजीत कौर हरमेश पोतरे गुरनूर परनीत परी नवदीप बबलू ते माणो। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो लिख रही है सानू चिट्ठी जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार। अगली चिट्ठी आई साढ़े को जिला रतलाम मध्य प्रदेश प्रोमिला गंज अलोट तो दलवंत कुमार बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल पायर वर्मा प्रियांश वर्मा ते ऋषि वर्मा। तो पिंड पक्षी खुरद फरीदकोट तो लिख रहा सतनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल गुरलीन तो पूरा गिल परिवार। तो इन्होंने सारिया ने कहा जी सानू कोई भी सोहना जहा पंजाबी गीत सुना दिओ। आओ जी असं सुनते हैं, तुहानू सुनांदे हैं सोहना जहा पंजाबी गीत जोरावर की आवाज़ दे विच। ये पंजाबी गीत

जी प्रोग्राम चल रहा चिट्ठियां मिठियां ते साडे नवे स्रोते भी कई बार प्रोग्राम सुनते हैं तो जिन्होंने हमने हमने रेडियो सैट ऑन किया है तो वह साडे प्रोग्राम के अपने फरमाइशी चिट्ठिया भेजने के लिए पता नोट कर लो। प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर तो पिन कोड है जी 144001। तो इस दिन नाल ही असीं पढ़ते हैं अपने स्रोतियां दीआं अगलियां चिट्ठियां। बाड़िया कला हुशियारपुर तो चिट्ठी लिख रहा सानू बूटी राम हांडा विनी उमंग ते नीरज हांडा। पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो चिट्ठी भेजी है सानू सोहन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगन राठी लवकुश वर्मा हनू अमन गौड़ कंचन बिरट कुलदीप ढींगड़ा पिंड कुड़ियाणा तो बाबू सिंह महीनी वाला छित्रपाल सिंह खंगूड़ा तो रजिंदर सिंह खंगूड़ा गुरमीत सिंह वीरक पिंड कमाल वाला तो रणजीत कौर पट्टी बोहड़ सिंह पट्टी काका पट्टी। तो अगली चिट्ठी साढ़े को आई है जी सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े तो आकांक्षा नरवाड़े तो आकाश कुमार। तो इन्होंने सानू कहा जी कोई भी सानू हैप्पी कोटी की हैप्पी राय कोटी की आवाज़ सानू कोई भी गीत सुना दिओ। लो जी इन्हों की फरमाइश तो तुहानू सुनान जा रही हैं हैप्पी राय कोटी की आवाज़ के पंजाबी गीत।

सुषमा गर्ग, जशन गर्ग ते विनोद गर्ग, मंडी गोलू वाला राजस्थान तो ब्रिज लाल चौहान, नीरज कुमार चौहान, पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, अमर लाल पोस्टमैन पोस्टमैन। तो अगली चिट्ठी साढ़े को सू भेजी है जी रामनाथ अद्दापुर, सुखमनजीत सिंह पोत्रा, तो सहजप्रीत कौर पोत्री। तो चिट्ठी लिख रही है सानू जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो डाकखाना चनाथल कला रामनाथ अद्दापुर कलोनिया। अगली चिट्ठी भी साढ़े को फाजिलका तो आई आ पिंड बजीतपुर तो लिख रहे हैं भोमा बलजीत सिंह, विनंग खेड़ा तो भोला सिंह। तो इन्होंने सानू फरमाइश की है कि सानू अमरिंदर गिल की आवाज़ कोई भी गीत सुना दो। आओ सुनते हैं अमरिंदर गिल की आवाज़ के पंजाबी गीत।

तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत। तेरे बिना ये दिल अधूरा सा लगता, तू मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी जरूरत। सदाबहार गीत लेके आशा हाजिर, प्रोग्राम दा पहला गीत लैला मजनू वजो, आवाज मोहम्मद।

मेरा कासिब मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, लिख कर तेरा नाम जमीन पर तुझ पे सजदा करता है। लैला मजनू फिल्म गीत, मोहम्मद रफ़ी थी आवाज, नाल लता मंगेशकर थी आवाज, तुसी सुनया सदाबहार गीत च अगला नगमा थोड़े लिए महेंद्र कपूर की आवाज़ सुन दिया। बहुत ही खूबसूरत गीत जो अज भी बीते समय च भी आने वाले समय च भी इस तरह गाए जाते रहेंगे, गुनगुनाए जाते रहेंगे।

तुझे चाहा ही नहीं तेरी परस्तिश की है, इस तरह टूट कर भला तुझे और किसने चाहा होगा। हमराज फिल्म का गीत सी महेंद्र कपूर दी आवाज। लता मंगेशकर शमशाद बेगम दी आवाज। आज अगला गीत थोड़े लिए अगली कव्वाली है फिल्म मुगले आजम चो।

सदाबहार गीत से सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र से। अगला गीत फिल्म स्वीकार किया मैंने जो, आवाज लता मंगेशकर दी।

महेंद्र कपूर ते गाए फिल्म निकाह दे इस गीत दे नाल ही सदाबहार गीत प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। शाम के 4:30 बजे ने थोड़ी देर बाद श्रवण करोगे श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण।

0: सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनुपा। राग बिलावल विचली चौपदे रचना दा गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सबद ब्रह्म है, सबद कल्याणकारी है, ए गुर का बचन कदे नष्ट नहीं हुंदा। ए सबद सदा सहाई है, सदा संगी है, इस लोक विच ते परलोक विच सबना दा रखवाला है। इस बचन नू सिमर सिमर के अंतर आत्मे वसौना चाहिदा है। यही गुरु का बचन जीवां दा सहारा है। इसनू जल डोब नहीं सकदा, चोर चोरी नहीं कर सकदा, अग्नि उसनू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकदी। सुनदिया तेजिंदर सिंह होरां पासों वार्ता, गुर का सबद काटै कोट कर्म।
1: पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर हर थां वस रहा है। गुरबाणी का पावन फुरमान है, थान थनंतर सबनी थाई जो दीसै सो तेरा। बेशक मनुख धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लवे, वधेरे तो वधेरे हर तरह का ज्ञान हासिल कर लवे, हर धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लवे, वो परमेश्वर किसी चार दीवारी विच बंद नहीं है। उसका प्रकाश हर हिरदे विच, हर थां ते जरे जरे विच है। जिहड़ा मनुख अखौती कर्मकांडा तो उपर उठता है, उसनू घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा दे दर्शन हुंदे हन। लोड़ गुरु दा शब्द कमाउण दी है। भावें मनुख किन्ना भी पापी क्यों ना होवे, गुरु दा शब्द उसदे सारे पाप कट्टण दे समर्थ है। असल विच जदों तक मन विच संकल्प

दिक्कत जाइया रे कर लागू रंग, मेरा चित न चले मन पैओ पंग। इस शब्द का गायन किया सिपाही अर्शप्रीत सिंह होरा ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक

0: वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਸ ਵੇਲੇ 6:05 ਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

रात 10 बजे पेश करांगे मुख खबरां। दस बज के 2 मिनट ते समा रहेगा कवि सभा पंजाबी दे विच तुसी सुनोगे। इस विच भाग लैण वाले ने जी बिशन दास, अनुपाला, तरसेम लाल ते राजवंत कौर। रात 10:30 बजे समात फरमाओगे चंद गजलां। ग्यारह बज के 10 मिनट ते प्रोग्राम सौगात तुसे सुनोगे डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र तों।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण सुनते हैं देश गान।

0: उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस मौके 11 संस्थावां अते लोकां नूं राज भाषा दे खेत्र विच उहनां दे शानदार काम अते योगदान लई सन्मानित कीता गया। पंजाब भर विच चलाई गई एक व्यापक एनफोर्समेंट मुहिम तहत आबकारी अते कर विभाग वल्लों GST नियमां दी उलंघना दे शक विच समान लजा रहे 170 वाहनां नूं फड़िया गया है। यह कार्रवाई सारियां सूबा पड़ताल अते रोकथाम यूनिटां वल्लों सांझे तौर ते मंडी गोबिंदगढ़ अते खन्ना ते विशेष ध्यान केंद्रित करदे हुए कीती गई, जिस विच 5 करोड़ रुपए तो वध दी कीमत दे लोहे दे स्क्रैप, तैयार लोहा अते स्टील दा समान जब्त कीता गया। पंजाब दे वित्त आबकारी अते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस मुहिम दे वेरवियां दा खुलासा करदिआं दस्सिआ कि वड्डी गिणती विच वाहन सही बिलां ते निर्धारित दस्तावेजां तों बिना पाए गए, जो कि GST कानून की स्पष्ट उलंघना है। उन्होंने दस्सिआ कि जब्त कीतीआं गईआं खेपां की बरीकी नाल जांच की जा रही है, जिस ते एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जांच मुकम्मल होने तों बाद बणदे टैक्स अते कानूनी बकाए की गणना ते वसूली समेत ढुकवीं कार्रवाई की जाएगी। सूबे विच भ्रष्टाचार विरुद्ध विड्डी मुहिम दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त महीने विच 6 वख-वख मामलों विच 7 सरकारी मुलाजमान अते एक प्राइवेट व्यक्ति नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हाथीं काबू कीता है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दस्सिआ है कि इस समय दौरान ब्यूरो वल्लों हर खेत्र विच भ्रष्टाचार नूं खत्म करन लई व्यापक यतन कीते गए ने। उन्होंने दस्सिआ कि ब्यूरो वल्लों पिछले महीने दौरान वख-वख समर्थ अदालतों विच विजिलेंस नाल संबंधित 13 केसां दे चलान पेश कीते गए। इस तों इलावा भ्रष्टाचार दे मामलों की डूंघाई नाल जांच करन वास्ते 3 विजिलेंस तफतीशां भी दर्ज कीतीआं गईआं ने। उन्होंने अगे दस्सिआ कि 23 मुलजमान विरुद्ध 10 अपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिन्हां विच 17 सरकारी मुलाजम शामिल ने। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंध ने अज फिरोजपुर च फिरोजशाह विखे नवीनीकरण किए एंगलो सिख युद्ध अजायब घर का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि फिरोजशाह की यह इतिहासक धरती सिख फौज की अदुत्ती बहादरी, सूरबीरता ते कुरबानी की गवाह है। मंत्री ने कहा कि इस स्मारक की स्थापना तो लगभग 50 साल बाद पंजाब सरकार वालों करीब 10 करोड़ रुपए की लागत नाल इस अजायब घर का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश सिर्फ इतिहासिक विरासत को संभालना ही नहीं, सगों इस महान इतिहास को आधुनिक ढंग नाल नौजवान पीढ़ी और देश विदेश तो आने वाले सैलानियों तक पहुँचाना है। भारत सरकार के सूखम छोटे ते दरम्याने उद्यमा MSME मंत्रालय अधीन राष्ट्रीय SC/ST हब लुधियाणा वालों SOCHM के सहयोग नाल उद्यमी जागरूकता ते विशेष विक्रेता विकास प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश अनुसूचित जातां ते अनुसूचित कबीले नाल संबंधित भाईचारियां दे मौजूदा ते उभर रहे उद्यमियों नूं सरकारी योजनावां, वित्तीय सहायता, सरकारी खरीद ते व्यापारक मौकियां नाल जोड़ना है। यह प्रोग्राम बुधवार 16 सितंबर सवेरे 9 बजे तो IK गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी PTU के अमृतसर कैंपस में आयोजित किया जाएगा। पंजाब विच नशियां खिलाफ लोक जागरूकता पैदा करन दा ते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण दे संकल्प नाल भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 18 तों 30 सितंबर तक 4 नशा मुक्त पंजाब यात्रावां कढ़ियां जा रहियां ने। इन्हां यात्रावां दौरान लोड़ींदे सुरक्षा ते ट्रैफिक प्रबंध यकीनी बनाउण लई अज पंजाब BJP दे एक वफद ने सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों दी अगवाई विच पंजाब दे डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस DGP नूं एक मंग पत्र सौंपिआ। इस मौके केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि इन्हां यात्रावां विच केंद्रीय मंत्रियां, BJP दे सीनियर लीडरशिप अते पंजाब BJP दे होर आगुआं तों इलावा वड्डी गिणती विच आम लोक शामिल होणगे। इस लई यात्रा दे शुरुआती अते समाप्ती स्थापना समेत पूरे रूट ते सुरक्षा दे ढुकवें प्रबंध कीते जाणे जरूरी ने। पंजाब 27 अक्तूबर तो 5 नवंबर तक हाकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की मेज़बानी कर रहा है। यह पहली बार है जदों राज विच इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी होएगी। जलंधर का ओलंपियन सुरजीत हाकी स्टेडियम उद्घाटनी समारोह ते लीग मैचों की मेज़बानी करेगा, जबकि मोहाली का ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हाकी स्टेडियम सैमीफाइनल ते फाइनल मैचों की मेज़बानी करेगा। मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने अज एशियन हाकी फैडरेशन के अधिकारियों की मौजूदगी में टूरनामेंट का लोगो जारी किया। इस टूरनामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत 6 देशों की हाकी टीम हिस्सा लेंगी। एशिया के सर्वोत्तम हाकी खेलने वाले

0: पटवारी साहब घर ही हो?
1: आजो आजो आजो प्रिंसिपल साहब आजो बच्चे आलियो आजो।
0: जय हिंद कबूल करो जी।
1: जय हिंद जी जय हिंद जी। होर सुनाओ प्रिंसिपल साहब की हाल चाल तुहाडा?
0: चढ़दियां गला जी ते बल्ले बल्ले हो गई तुहानू वेख के।
1: देखो ना अज वैसे ही बल्ले बल्ले हुई है। अज दिहाड़ा जड़ा है ना बहुत ही उंदा दिहाड़ा। किवें? क्योंकि दो दो अज मुबारकां दा दिन बनिया होया।
0: पहली दे दियो जी मुबारकबाद।
1: पहली मुबारकबाद अज गणेश चतुर्थी यानी कि अज गणपति बब्बा मोरिया है चारे पासे।
0: बिल्कुल जी ते हुण तां पूरी दुनिया च छा गए जी गणपति बब्बा।
1: देखो गणपति बब्बा वैसे ते त्यौहार जड़ा है देश च ही नहीं विदेशां च भी बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है।
0: बिल्कुल जी कहिंदे कि गणपति जी दे पैर जिथे भी पैंदे है हर तरह की खुशहाली तरक्की सुख शांति उन्होंने पिछे पिछे अपने आप आती है।
1: लो जी फिर ये जी कहते ना समृद्धि है जिथे भी गणपति बब्बा का पैर पैजे उत्थे तरक्कियां भी होणगियां पैसा भी आऊगा तो खुशियां का माहौल तो आपे बन जाए।
0: योजा पैसा आएगा जेड़ा तुहानू खुशी देगा सुकून देगा तो तरक्की देगा।
1: लो जी अज का दिहाड़ा वाकई जी क्योंकि अज गणपति बब्बा सारे दे घर पहुंचे ने।
0: बिल्कुल
1: ये रहणगे फिर दस दिन रहणगे
0: 26 तारीख तक रहणगे जी। जिन्ने भी दिन ने हर दिन पवित्र ही नहीं है खुशहाली वाला खुशी वाला ते मौजा वाला है जी।
1: जी बिल्कुल जी ये तो मुबारक हो गई साढ़े सारे वीर सुनने वाले साढ़े सारे साथियों।
0: बिल्कुल जी अज

0: 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। कि तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: हाँ जी प्रिंसिपल साहब,
3: बहुत जानकारी मिली होनी अपने किसान वीरां नूं।
2: लो जी, फिर जो माहर गल करते हैं फिर जानकारियां तो मिलदियां ही नहीं। दुख बोल गाउण दे सुनाने
3: आंदे हो जी।

0: हाँ जी, फिर पता लगू कबीलदारी का।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: जी,
0: जी, इस करके सारे काम जड़े है ना वो बड़े ही अनुशासित तरीके दे नाल।
1: बजट बना के व्योंतबंदी दे नाल चलोगे
0: हाँ, तो फिर दिक्कत नहीं आती। पर हुण आपां चलदे हां जी अगली गलबात सुनाने हैं तुहानू, मच्छी पालन लई केंद्र सरकार दियां वख-वख स्कीमां। डॉक्टर विनीत इंदर कौर सन आए सन साडे कोले, जानकारी दित्तियां, आपां सुणदे हां।
1: सुनाओ जी।
2: सो मेरा नाम डॉक्टर विनीत इंदर कौर है। मैं बतौर प्रिंसिपल साइंटिस्ट कॉलेज ऑफ फिशरीज गुरुअंगद देव वैटनरी और एनीमल साइंस यूनीवर्सिटी लुधियाना विखे अपनिया सेवावां निभा रही हूँ। अज मेरा गलबात करन दा विशा यह है कि पंजाब विच मच्छी पालन दे किते नूं प्रफुलित करन लई केंद्रीय सरकार तो केड़ियां केड़ियां जिहड़ियां स्कीमां ने दित्तियां जा रही हैं। सो जे मैं गल करां कि मच्छी पालन दी, मच्छी पालन एक इहो जिहा किता है जिहड़ा कि साडे देश विच बहुत ही प्रगति नाल अगे वध रहा है। सो देश विच जे आपां अपने सूबे की गल करिए पंजाब सूबे की, तो पंजाब विच भी जिहड़ा मच्छी पालन है वह बड़ी ही तेजी नाल अगां होके आ रहा है, तो असी नीली क्रांति वाल अपने कदम जिहड़े आ चुक लए हन। सो इस खेत्र की होर प्रफुलता लई केंद्रीय सरकार वालों बड़िया योजनावां ने जिहड़ियां वह शुरू कीतियां गईयां हन। सो इस बारे जे मैं गलबात करां तो सब तो पहला मैं गल करांगी एक स्कीम आई सी 2021 विच जिसका नाम सी प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना। ये योजना जिहड़ी सीगी ये 5 साल की योजना सी 2024 तो 25 तक, जिहड़ी कि 20,000 करोड़ के बजट नाल लियांदी गई। इस योजना विच पूरे भारत विच हर सूबे विच बहुत सारे मच्छी पालकां ने ते मच्छी पालन नाल जुड़े हुए बड़े ही भागीदारां ने जिहड़ियां सबसिडियां लईयां अरे बड़े फायदे उठाए। हुण ये स्कीम जिहड़ी है इहदा एक पहला फेज जिहड़ा खत्म हो चुका है ते दूसरा फेज आने वाला है। अज जिहड़ी स्कीम बारे मैं गल करन जा रही हाँ वह सरकार की नवीं स्कीम है। वह स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये योजना जिहड़ी है ये 23-24 विच शुरुआत हुई है इस योजना की, तो यह तकरीबन 6,000 करोड़ के बजट वाली योजना है। हुण इस योजना का मुख मंतव सब तो पहला जिहड़ा मुख मंतव है वह यह है कि फिशरी सैक्टर नूं फॉर्मलाइज करना। फॉर्मलाइज करन दा मतलब है कि जिन्ने भी मच्छी पालन दे खेत्र नाल जुड़े हुए व्यक्ति ने, चाहे वह मच्छी पालन वाला होए, चाहे वह मच्छी नूं फड़न वाला होए, चाहे वह मच्छी की ट्रेडिंग या मार्केटिंग जिन्हों आपां मंडीकरण कह दिंदे आ वह होए, मच्छी प्रोसैसिंग करन वाला होए, मच्छी नूं एक जगह तो दूजे जगह लिजाण वाला होए, हर वह व्यक्ति जिहड़ा मच्छी पालन दे किते नाल डायरैक्टली या इनडायरैक्टली जुड़िया होया है उन्हूं एक जगह ते एकत्रित करना। उदे वास्ते इस स्कीम दे अंडर सब तो पहला जिन्ने भी व्यक्ति इस खेत्र नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिहदा नाम है नैशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म ते रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। सो इस प्लेटफॉर्म ते रजिस्टर करन लई बहुत ही सौखी प्रक्रिया है। असी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जिहड़ी केंद्रीय सरकार दी साइट है उत्थे जाके इस प्लेटफॉर्म ते अपने आप नूं रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करन लई सानू 2-3 चीज़ां दी जरूरत पैंदी है, जिदे विच वी साडा आधार कार्ड, साडा पैन कार्ड ते साडा बैंक अकाउंट खाता होना बहुत जरूरी है। सो ए जदों कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म ते रजिस्टर करदा है तां ओह जिहड़ी भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दी सूची है मच्छी पालन नाल जुड़े हुए हर व्यक्ति दी, उस सूची विच उसदा नाम आ जांदा है। इस प्लेटफॉर्म ते रजिस्टर करन तो बिना जे आपां जिहड़ी स्कीम दी मैं गल कर रही हां प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जे इस योजना दे अंडर किसी भी भागीदारी ने, किसी भी बेनीफिशरी ने कोई भी सुविधा लैनी है, कोई भी ग्रांट लैनी

0: अंत विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर सुन लो। अमरीका दे इक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नूं बहुत सफल दसदिआं कहा है कि नवीं दिल्ली ऐलाननामा वक्खो वक्खरे विचारां वाले देशां विचकार सहमति बनाउण दी भारत दी योगता नूं दर्शाउंदा है। सरकार ने कहा है कि फौज के अणथक यत्नां सदका जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा स्थिति पूरी तरह काबू हेठ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज नवी दिल्ली विच वियतनाम के विदेश मंत्री नाल 19वीं भारत वियतनाम संयुक्त कमिशन की मीटिंग की सह प्रधानगी की है। सरकार ने नेपाल बिजली अथार्टी इस साल 31 दसंबर तक 18 घंटे रोजाना बिजली बरामद करने की आग्ञा दे दी है। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविधा प्रोग्राम में हिंदी दिवस पर विशेष काव्य पाठ अंजलि द्वारा।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है हिंदी की गौरव गाथा। कबीर की दोहों से निकली सच कहने की धार है हिंदी, तुलसी की चौपाइयों में भक्ति का संसार है हिंदी। सूर के पद जब गूंज उठे कृष्ण प्रेम मुस्काया, मीरा के हर गीत में हमने हिंदी का रंग पाया। मानस से लेकर कामायनी तक शब्दों का विस्तार है हिंदी, प्रेमचंद के गोदान में जनजीवन का सार है हिंदी। मैथिली शरण गुप्त की वाणी में जागा राष्ट्र अभिमान, दिनकर की रश्मिथी में गुंजा वीरों का गान। महादेवी की संवेदना में आंसू भी मुस्काए, निराला के शब्दों ने बंधन सारे तोड़ दिखाए। हरिवंश राय की मधुशाला ने जीवन का अर्थ बताया, बच्चन के शब्दों ने जैसे हर मन को गले लगाया। फणीश्वर नाथ रेणु के गांवों में माटी बोल उठी, रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी बनकर ज्वाला डोल उठी। यह भाषा केवल शब्दों का एक सुंदर संसार नहीं, यह भारत की आत्मा है, कोई साधारण उपहार नहीं। कभी कहानी, कभी कविता, कभी उपन्यास बनी, कभी संघर्षों की आवाज बनी, कभी विश्वास बनी। इसने इतिहास लिखा है, इसने वर्तमान सवारा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य भी निखारा है। अंग्रेजी हो या संस्कृत, पंजाबी हो या तमिल, हर भाषा का मान रहे यही भारत की मंजिल। पर अपनी भाषा के प्रति मन में सम्मान रहे, हिंदी के हर अक्षर में भारत का अभिमान रहे। कबीर की सच्चाई रहे, तुलसी की आस्था रहे, प्रेमचंद की संवेदना रहे, दिनकर की ऊर्जा रहे। जब तक इन शब्दों की विरासत है तब तक हिंदी जीवित रहे। हिंदी केवल भाषा नहीं, पीढ़ियों का संवाद है, हमारी स्मृतियों, संस्कारों और सपनों की बुनियाद है। आओ हिंदी दिवस पर इतना संकल्प जरूर लें, हिंदी को केवल बोलेंगे नहीं, हिंदी को जिएंगे भी। क्योंकि जिस भाषा में भारत धड़कता है, जिस भाषा में अपनापन मिलता है, जिस भाषा में मन की बात बिना संकोच कही जाती है, वह हिंदी है, और हिंदी पर हमें सदा गर्व रहेगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आजादी की आवाज थी हिंदी। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, जब हर दिल में आजादी का सपना धधकता था, तब तलवारों के साथ साथ शब्दों ने भी विद्रोह किया था, हिंदी ने भी आजादी का विगुल बजाया था। गांव गांव तक पहुंचे संदेश, चौपालों पर चर्चा होने लगी, कलम उठी तो सोई हुई जनता में चेतना जगने लगी। अखबारों के पन्नों से निकली स्वराज की पुकार, हिंदी के शब्दों ने पहुंचा दी जन जन तक ललकार। भारतेंदु की लेखनी ने देश प्रेम की लौ जलाई, मैथिली शरण गुप्त की कविता ने राष्ट्र चेतना जगाई।

0: लगाई। माखन लाल चतुर्वेदी के शब्दों में माटी का मान था, पुष्प की अभिलाषा में भी मां भारती का सम्मान था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम ने वीरता का गीत सुनाया, झांसी की रानी के शौर्य को हर भारतवासी तक पहुंचाया। गांधी के विचारों ने हिंदी के माध्यम से जन जन से संवाद किया, सरल शब्दों में स्वराज का अर्थ समझाया, विश्वास दिया। हिंदी बनी वह सेतु जो शहरों से गांवों को जोड़ गई, अलग अलग बोलियों प्रांतों के बीच एक राष्ट्रीय भावना छोड़ गई। ना ये केवल कविता थी, ना केवल अखबार की आवाज, ना ये केवल कविता थी, ना केवल अखबार की आवाज, यह आंदोलन की धड़कन थी, ये स्वतंत्रता का अंदाज। कलम कभी मशाल बनी, कभी नारा बनकर गूंजी, कभी क्रांतिकारी गीत बनी, कभी मां भारती की पुकार बनकर गूंजी। आज जब हम स्वतंत्र हवा में सांस लेने का अधिकार रखते हैं, तो उन शब्दों को भी नमन करें जो आजादी के संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे। तलवारें इतिहास में दर्ज हुई, शहीदों के बलिदान अमर हुए, पर उन वीरों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले शब्द भी कम वीर नहीं थे। इसलिए हिंदी केवल अभिव्यक्ति की भाषा नहीं, स्वाधीनता संग्राम की, जन चेतना की आवाज थी हिंदी। आज हिंदी दिवस पर आओ उस विरासत को प्रणाम करें। हिंदी को केवल भाषा नहीं, देश की एकता और चेतना का सम्मान करें। जिस कलम ने गुलामी में आजादी का सपना लिखा था, आज उस हिंदी ने स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा है। जिस कलम ने गुलामी में आजादी का सपना लिखा था, आज उसी हिंदी ने स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हिंदी को अपनाएं। हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं, यह दिल की आवाज बन जाए। जो बात दिल से निकलती है वह हिंदी में दिल तक जाए। घर में हिंदी, मन में हिंदी, बातों में मिठास घोलने, अपनेपन की इस भाषा को खुलकर गर्व से बोलने। दफ्तर हो या विद्यालय, बाजार हो या चौपाल, जहां सहज हो हिंदी बोलना, क्यों करे फिर कोई मलाल। मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर संदेश हिंदी में लिखे, अपने विचार अपनी भावनाएं अपनी भाषा में ही दिखे। हिंदी में सपने देखेंगे, हिंदी में अरमान लिखेंगे, अपनी मिट्टी की खुशबू वाले हिंदी में ही गीत लिखेंगे। दूसरी भाषाएं सीखें हम, ज्ञान का विस्तार करें, लेकिन अपनी मातृभाषा का दिल से सदा सम्मान करें। हिंदी को केवल एक दिन का उत्सव बनाकर छोड़ ना दें। हिंदी दिवस के बाद भी इसके दीप बुझने ना दें। बोलें हिंदी, लिखें हिंदी, हिंदी में संवाद करें। अपने शब्दों की ताकत से भारत को और महान करें। ना हिंदी छोटी, ना कोई भाषा बड़ी, हर भाषा का अपना मान, पर अपनी भाषा से जुड़ना ही होता है अपनी जड़ों का सम्मान। हिंदी को जीवन में उतारें, हिंदी को व्यवहार बनाएं, अपनी भाषा पर गर्व करें और दूसरों को भी इसका मान बताएं, क्योंकि भाषा वही महान है जो दिलों को जोड़ सके, और हिंदी तो वह भाषा है जो मैं को हमसे जोड़ सके। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा प्रोग्राम में अंजलि का हिंदी दिवस पर विशेष काव्य पाठ।

आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कहिंदे ने कि जिंदगी इम्तिहान लैंदी है, हौसले दी परख करती है। जो मुस्कुरा के औखे पल लंघ जाण, जित अखीर उसे दी ही हुंदी है।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। गल करते हैं सच्चे प्यार दी। सच्चा प्यार दिल विच वस जावे तां रूह नूं सुकून मिल जांदा है। फिर कोई फर्क नहीं पैंदा कोई नेड़े होवे या फिर दूर, उसका एहसास सदा दिल विच रहिंदा है।

0: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम च वेला हो गया जी छोटे जिहे अंतराल दा, सो मुड़ वापिस आने आ इस अंतराल तो बाद।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजी कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबने तो पहला एक मिनट प्लीज रुको ते सोचो तो पुष्टि जरूर कर लो। सावधान हो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: जागरूक बनो, ध्यान रखो क्योंकि आजकल ये ठगण के नए तरीके ने, क्योंकि नौकरी देने वाले कभी भी पैसे नहीं मांगते।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए या लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन स्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुन वाले दा स्वागत करते हैं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। सच्ची चाहत विच शोर नहीं हुंदा, एक डूंगी खामोशी हुंदी है जो अखां राही बोलती है ते दिल अंदर सदा गूंजती रहंदी है।

तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण तो कुछ ही पलां च यानी 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज 8:09, 9:15 बजे स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो बस कुछ ही पलां च।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व के कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो

0: माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के

0: भूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बस ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
1: ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे हिंदी नाटक नया सवेरा। कलाकार सुनील जोशी, सज्जन कपूर, कविता शर्मा, रमनदीप, कमलेश गुप्ता, नीलम शर्मा, बांका बहादुर अरोड़ा, ऋषभ गणेश, मनोज खोसला, विश्वबंधु सुधीर, अर्जुन भल्ला, निर्देशक विनोद कुमार धीर, प्रस्तुति गुरविंदर सिंह।

0: उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग नशों के आदि हैं। आप में से कई लोग तो इसी चक्कर में कई तरह का अपराध करके जेल की सजाएं भी काट चुके हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को पेश कर रहे हैं जो कभी आप ही की तरह नशों का शिकार था, मगर आज वो नशे पूरी तरह छोड़ चुका है। हाँ, और एक भले शहरी की तरह जिंदगी जी रहा है। आइए अरुण जी, आपका स्वागत है।
1: प्यारे दोस्तों, आज मैं एक विशेष संदेश लेकर आप सब मित्रों के बीच में आया हूं। कभी मैं भी आप ही की तरह नशों का आदि था, नशे करके तरह तरह के अपराध करता था। यही स्वाद और मजे लेने के फेर में बुरी संगति में पड़कर मुझे नशों की लत लग गई। मेरा सामाजिक जीवन नष्ट हो चुका था। मैं मौत के मुंह में जा पहुंचा था, मगर आज मैं नशों की गिरफ्त से पूरी तरह आजाद, नशे छोड़ चुका हूं। दोस्तों, मुझे नशे कैसे लगे, मैं कैसे बदला और कहां तक फंसा हुआ था, ये सब जानने के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। सुनिए।
2: आजकल कहां रहते हो? बहुत कम दिखाई पड़ते हो।
1: यही रहता हूं अनुपम, जाना कहां है मेरे यार?
2: पता लगा है कि आजकल वीरू के साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लगे।
1: हाँ, नया नया दोस्त बना है वो मेरा।
2: मगर मैंने तो सुना है कि वो अच्छा लड़का नहीं है।
1: ऐसी कोई बात नहीं,
2: मुझे पता चला है कि वो नशे करता है। कहीं तुम भी उसके साथ नशे तो नहीं करने लगे?
1: थोड़ा बहुत मैं भी ले लेता हूँ, अच्छा लगता है।
2: नशे करना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त।
1: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
2: शुरू शुरू में अच्छा लगता है, सुना है कि मजा भी बहुत आता है, मगर बाद में जब इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है, तो आदमी इसके बिना रह नहीं पाता। असल समस्या होती ही तब है जब नशा लेना ही पड़ता है और इसकी मात्रा भी लगातार बढ़ने लगती है।
1: अच्छा, फिर?
2: मेरी बात को हल्के में मत लो मेरे दोस्त।
1: सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात।
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि नशे करने से किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं, कईयों को तो एड्स की घातक बीमारी तक हो जाती है।
1: अब इतना नहीं मत डराओ यार।
2: जितना मुझे मालूम था उतना तुझे बता दिया, आगे मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी।
1: अरे कुछ नहीं होता मुझे, देखो, अरे इधर देखो, हट्टा कट्टा हूँ।
2: देखते ही देखते सारी से

0: नष्ट हो जाती है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूँ।
1: अरे सभी के साथ ऐसा नहीं होता, अपना अपना शरीर होता है और हर किसी की कैपेसिटी अपनी अपनी होती है।
0: शरीर लोहे का नहीं होता मेरे दोस्त, हार्ड मास का ही बना होता है और ये नशे भीतरी अंगों पर असर डालते ही हैं।
1: अच्छा छोड़ो यार, बहुत हो गया, अब कोई और बात करो। चलो चलो चलकर कैंटीन में चाय पीते हैं।
2: आज फिर तुमने नशा कर रखा है?
1: नशा कहाँ, मैंने तो कोई नशा नहीं किया। शांता तुम्हें वहम हो गया?
2: मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल इस बात की चुगली कर रही है कि तुमने नशे की भारी डोज ले रखी है।
1: अरे बोला ना शांता, मैंने कोई

0: जानता तुम्हें वहम हो गया है।
1: मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल इस बात की चुगली कर रही है कि तुमने नशे की भारी डोज ले रखी है।
0: अरे बोला ना शांता, मैंने कोई नशा नहीं किया। आओ उधर पार्क में बैठते।
1: नहीं नहीं बैठना मुझे तुम्हारे साथ।
0: क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छा भला तो हूँ।
1: नशेड़ी होते जा रही हो तुम, ये सब तुम्हारी बुरी संगति का असर है। मैंने पहले भी समझाया था तुझे कि उस नशेड़ी बीरू का साथ छोड़ दो।
0: ओ बीरू, अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भला है।
1: अच्छा लड़का है, भला लड़का है, तो तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे?
0: मैं भला उसका साथ क्यों छोड़ूंगा है? वो तो मेरा सामान लाके देता है।
1: सामान? कौन सा सामान?
0: अरे सामान वही सामान जो मैं हर रोज। अच्छा मैंने सामान कहा क्या?
1: अरुण ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। देखो तुम्हें बीरू और शांता दोनों में से एक को चुनना होगा।
0: वाह, एक को चुनना होगा? क्यों भला, क्यों तुम सब मिलकर मेरे दुश्मन बनने पर तुले हो?
1: अरुण मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ।
0: क्या?
1: आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुम ये नशे छोड़ दोगे उसी दिन मेरे पास आना
0: शांता,
1: वरना मेरे पास कभी मत आना और मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझो। पापा से कहकर तुम्हारी मम्मी को संदेश भिजवा दूंगी आज कि नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ शादी।
0: शांता, अरे रुको शांता, चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी, फिर आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी।

0: यहाँ भी नहीं है।
1: कहाँ गए रुपए? नगमा, बेटी नगमा।
2: हाँ माँ।
1: यहाँ ट्रंक में मैंने कुछ रुपए रखे थे छिपाकर, मिल नहीं रहे।
2: मुझे नहीं पता माँ, मैंने तो देखे ही नहीं, ना ही मैंने लिए हैं।
1: जरूर अरुण ने लिए होंगे। अब क्या करूं? घर का राशन लाने के लिए मालकिन से एडवांस लिए थे,
2: अब कैसे करेंगे माँ? घर का राशन तो बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है।
3: मैं नशे में
1: अरुण जरा इधर आना।
4: हाँ माँ, कहो क्या बात है?
1: इस ट्रंक में से रुपए क्या तुमने लिए हैं?
4: हाँ माँ, मैंने लिए थे। मुझे जरूरत थी, मैं बताना भूल गया।
1: तुम्हें ऐसी क्या जरूरत थी जो मुझे बताए बिना रुपए निकालिए यहाँ से? मैंने तो छिपा कर रखे थे।
4: थी कोई जरूरत? मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझता।
1: क्यों नहीं समझता? जरूरत है, बताओ क्यों लिए तुमने रुपए? वह भी मुझसे चोरी? तुम्हें पता है कि ऐसे किसी के रुपए लेना चोरी करना होता है।
4: अजीब बात है, अपने घर से तो लिए हैं, कौन सा किसी और के घर से लिए हैं?
1: अच्छा चलो लिए तो लिए, पर लिए क्यों?
4: माँ मेरी भी कुछ पर्सनल जरूरतें होती है।
1: ऐसी क्या जरूरत है तुम्हारी जो तुम बता नहीं सकते, जिसके लिए घर में चोरी तक करते हो?
4: नहीं बताऊंगा।
1: मुझे पता है, सब पता है।
4: क्या पता है?
1: लोग मुझे सब बताते हैं।
4: क्या बताते हैं?
1: यही कि नशे करते हो तुम, और अब तुम अपने नशे के लिए इधर उधर चोरियां चकारियां भी करने लगे हो।
4: झूठ बोलते हैं, वो बकवास करते हैं सब के सब। मुझे बताओ कौन कहता है, मैं उसका सर फोड़ दूंगा।
1: किस किस का सर फोड़ोगे? हे राम, अब मैं क्या

0: सुषमा, आज फिर तुम काम पर देरी से आई हो।
1: हाँ मालकिन, कुछ देर हो गई।
2: पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत नाके करने लगी हो। कभी आती हो, कभी नहीं आती हो। आती हो तो भी लेट हो जाती हो, जब चीज चाहे तुम छुट्टी कर लेती हो।
1: मालकिन, मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है।
2: क्यों, क्या बात हो गई है?
1: मेरे बेटे अरुण ने परेशान कर रखा है मालकिन।
2: क्या हुआ भाई, क्या कहता है वो?
1: बुरी संगति में पड़कर नशे करने लगा है।
2: ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है।
1: नशों की खातिर घर में चोरी कर लेता है। मेरे कुछ गहने थे सोने के, चोरी करके बेच दिए। घर की और चीजें भी उठाकर बेच देता है मालकिन।
2: ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है।
1: हाँ, दुखी हो गई हूँ उससे, अब तो हद ही हो गई है।
2: उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था।
1: डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ मालकिन, पर ढंग से इलाज करवाता ही नहीं।
2: आजकल तो सरकार ने भी नशा छुड़ाओ केंद्र खोल के रखे हैं, वहाँ दिखाना चाहिए।
1: लेकर गई थी वहाँ भी, वहाँ से भी भाग आता है।
2: इलाज के बिना कैसे ठीक होगा?
1: मैं अकेली औरत जात क्या करूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ? अरुण के पिता भी तो नहीं है।
2: हाँ सुषमा, पिता होते तो किसी का डर तो होता।
1: पिता के बिना बिल्कुल उदंड हो गया है। पिता के बाद उसे घर गृहस्थी का भार उठाना चाहिए था। यहाँ उल्टा मैं आप जैसे लोगों के घर झाड़ू पोंछा करके घर का खर्च चलाती हूँ।
2: इसकी शादी कर दो, शायद पत्नी के आने पे सुधर जाए और इसका मन बदल जाए।
1: मालकिन, देखी थी एक लड़की इसके लिए, पर वो लोग भी इसके कारनामे देखकर शादी से भिदक गए हैं। उन्होंने एक नशेड़ी लड़के को अपनी लड़की देने से इनकार कर दिया है। आसपास पड़ोसियों और रिश्तेदारों में जो थू थू हो रही है सो अलग।
2: सुषमा, अरुण अपनी बहन नगमा की बात भी नहीं सुनता है क्या? वो तो शादी लायक हो गई है ना।
1: कहा मालकिन, वो छोटी है ना, छोटी बहन की कहा परवाह करता है। अरुण ठीक होता तो वही करता उसकी शादी की भी चिंता।
2: हाँ, है तो बहुत गंभीर मामला। फिलहाल अभी तो तुम घर में झाड़ू पोछा कर लो, मेरे पति आएंगे शाम को, मैं उनसे बात करूंगी, शायद वो कोई रास्ता सुझा सके।

0: मेरे पीछे पुलिस लगी है।
1: बड़ी मुश्किल से बच के भाग के आया हूं मैं। माँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। नगमा दरवाजा अंदर से बंद कर देना।
2: तो रहने दो नगमा, दरवाजा खुला रहने दो, बंद करने की कोई जरूरत नहीं।
3: अरुण कहाँ है? अभी अभी अंदर घुसा है, बोलते क्यों नहीं हो? हमने देखा है, खुद देखा है।
2: क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने?
3: आज सुबह उसने एक औरत के गले से सोने की चेन खींचने की वारदात को अंजाम दिया है।
2: क्या? हाय राम, औरत के गले से चेन खींची है मेरे बेटे ने?
3: हाँ, और औरत जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ी है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका फोटो साफ दिखाई दिया है, चेन खींचकर भागते हुए। उसके खिलाफ इसी किस्म की चोरी व छीना झपटी की और भी कई शिकायतें मिली हैं।
2: हाँ? ये आवाज कैसी है? कोई जैसे कोई छत से गिरा हो। नगमा जा बाहर देखना जाके। अरे भैया, माँ, माँ, माँ, भैया नीचे गिर गए हैं। माँ, अरे भैया।
4: ओ, वो एक डिग गया नहीं, एक घबरा आ गया, छातों को छाल मार बैठा।
5: देखो सिर से कितना खून बह रहा है, पूरी तरह जख्मी हो गया है।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
5: ऐसे लगता नहीं है बचेगा।

0: ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ।
1: ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਹਟੋ ਸਭ, ਮੁਝੇ ਦੇਖਨੇ ਦੋ। ਸਰ ਸੇ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 108 ਨੰਬਰ ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ।
2: ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਸੇ ਨੀਚੇ ਕੁੱਦ ਕਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰ ਸੇ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
0: ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ।
3: ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ
4: डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा बेटा अरुण?
5: हाँ, पहले से ठीक है वो, ये अच्छा हुआ कि बेहोश नहीं हुआ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सर से खून काफी बह गया है, पर ब्लड प्रेशर ठीक है और नब्ज भी सामान्य चल रही है, उम्मीद है कि हम उसे बचा लेंगे।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जुग जुग जियो, पुता फलो, आप तो हमारे भगवान हैं।
5: ऐसा है कि इसे खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड का इंतजाम करना होगा आपको।
4: आप मेरा खून ले ले, बेटी है उसका भी ले ले, हमारे ग्रुप आपस में मिलते हैं डॉक्टर साहब।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग लैब में जाकर अपने अपने खून का लिख चेक करवाए।
4: डॉक्टर साहब क्या हम अरुण से मिल सकते हैं?
5: हाँ, उसे देख तो सकते हैं पर उससे बातचीत नहीं करना, उसे बुलाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आराम की सख्त जरूरत है उसे।
6: माता जी, आपको डॉक्टर साहब ने अपने चैम्बर में बुलाया है।
4: ठीक है सिस्टर, चलिए।
5: आइए माता जी, बैठिए। शुक्र है कि आपका बेटा शारीरिक तौर पर आप बिल्कुल ठीक है।
4: तो क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं?
5: नहीं, अभी नहीं, मैं नशों के सेवन का आदी है, उसने छत पर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, ऊपर से उस पर कुछ और भी पुलिस केस बने हुए हैं।
4: तो क्या उसे पुलिस ले जाएगी?
5: नहीं, फिलहाल हम उसे डी एडिक्शन सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पुनर्वास केंद्र में इसे मनोविशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में कुछ दिन रहना होगा। इसके नशे की आदतों को छुड़वाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपको ही नहीं बल्कि सारे समाज को यूं ही परेशान करता रहेगा।
4: ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप ठीक समझे, इसके नशे छूट जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।
7: डॉक्टर शारदा।
8: हेलो डॉक्टर जोशी,
7: बैठिए डॉक्टर शारदा।
8: कैसे हैं आप? कैसे याद किया?
7: मैंने विशेष तौर पर आपको यहाँ इस पुनर्वास केंद्र में बुलाया है। आपने नशा छोड़ने वाले नौजवान नवयुवतियों को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए जो एनजीओ बनाई है ना, नया सवेरा, हमें आज फिर उसकी सेवाओं की आवश्यकता आन पड़ी है।
8: आप तो स्वयं मनोविश्लेषक डॉक्टर हैं, क्या फिर कोई टिपिकल केस फंस गया है?
7: जी हाँ, सिविल हॉस्पिटल से रेफर होकर आ रहा है। आइए अरुण बेटा, अपना सर ऊपर करो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। ये डॉक्टर शारदा, ये तुमसे कुछ बातें करना चाहती है।
8: हेलो अरुण, कैसी तबीयत है आप तुम्हारी?

0: नमस्ते मैडम, शरीर तो पहले से ठीक है पर भीतर से बहुत डर लग रहा है, बहुत पछतावा हो रहा।
1: डॉक्टर शारदा, अरुण की शारीरिक रिपोर्ट तो सामान्य है पर इसका मन बहुत मायूस है। इसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने अरुण का हाथ पकड़कर वादा किया था कि अब तुम इस घर के मर्द हो, माँ का ख्याल रखना, ठीक समय पर अपनी छोटी बहन के हाथ पीले करना, उसकी शादी धूमधाम से करना। लेकिन ये गलत संगति में पड़ गया और सब कुछ भूल गया।
2: और पता है मैंने क्या किया डॉक्टर? नशे की उस जानलेवा तलब में मैंने अपनी बहन के गहने तक चुरा लिए। माँ के द्वारा जोड़े हुए एक एक पैसों को नशे में फूंक दिया डॉक्टर, जबकि मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी।
3: तुम्हारा पछतावा सही है, तुम्हें इसका पश्चाताप करना ही चाहिए। और पश्चाताप यही है कि तुम अपने कर्तव्य को जानो और एक नेक शहरी की तरह जिंदगी जी।
2: हाँ डॉक्टर, मुझे माफ कर दो मैडम, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मेरा नशा व नशे की तलब मुझसे चोरियां और लूटपाट जैसे घिनौने हरकतें करवा रही थी। बाद में पुलिस और बदनामी के डर से मैं और नशा करने लगा। मैंने हंसते खेलते अपने घर को नरक बना दिया। मुझे डर लगता है कि लूटपाट के दोष में पुलिस मुझे घर लेगी, थाने ले जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
3: कुछ खत्म हुआ है? हाँ, अगर तुम अभी नहीं समझो तो सब कुछ सच में बर्बाद हो जाएगा। तुमने नशे की धुन में जो अपराध किए हैं, कानून के अनुसार जो थोड़ी बहुत सजा बनती है वो भोग लेनी चाहिए। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी ही चाहिए।
1: डॉक्टर शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नशेड़ी नौजवान केवल अपना घर ही बर्बाद नहीं करता पर पूरे समाज और देश पर बोझ बन जाता है। जिस माँ बहन की इज्जत की हिफाजत तुम्हें करनी थी, तुम्हारी हरकतों की वजह से उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। सोचो उन पर क्या क्या गुजरती होगी।
2: बस डॉक्टर, बस
3: डॉक्टर जोशी ठीक कह रहे हैं अरुण, सिर्फ रोने से तुम्हारे पिता का आखिरी वादा पूरा नहीं होगा। डॉक्टर जोशी ने आज मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम्हें बताऊं कि इस दलदल से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ना है।
1: यस यस। हाँ अरुण, डॉक्टर शारदा की संस्था तुम जैसों के पुनर्वास में उनकी मदद करती है।
3: सुनो अरुण, हमारी संस्था नया सवेरा तुम्हें इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ेगी। हमारे पास व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, हम तुम्हें कंप्यूटर, अकाउंट्स और तुम्हारी रुचि का काम सिखाएंगे और एक इज्जतदार नौकरी भी दिलवाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपन पहली कमाई जब तुम अपनी माँ के हाथ में रखोगे ना, तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व के आंसू होंगे। तुम्हें धन जोड़ कर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करनी है।
2: थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू डॉक्टर शारदा, आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं इस मौत के जहर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं उन दोस्तों का चेहरा कभी नहीं देखूंगा जिन्होंने मुझे इस नरक में धकेला। मैं डॉक्टर, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, संस्था के साथ जुड़कर काम सीखूंगा, अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, अपनी बहन के हाथ पीले करूंगा और अपनी माँ की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाऊंगा। डॉक्टर मुझे बस एक मौका दो, डॉक्टर एक मौका।
1: साथ ही यह भी याद रखना कि तुम्हें पुनर्जन्म मिला है, भविष्य में आत्महत्या की कोशिश जैसी हरकत कभी नहीं करना है। जीवन की ऊंच नीच का मुकाबला बहादुरी

0: दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि नशे मानवता के माथे पर कलंक है, समाज के सीने का कोड है, मगर नशों को छोड़ा जा सकता है। बेशक नशे एक ऐसा व्यसन है जिनसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत, सामाजिक संबंधों और दैनिक जीवन को नुकसान पहुंचता है। आप भी डी एडिक्शन सेंटरों के मनोविश्लेषक डॉक्टरों के पास जाइए, उनकी मदद लीजिए और यकीनन आपका जीवन बदल जाएगा। ये जो नर्क जैसा जीवन आप जी रहे हैं, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है, यकीनन मिल सकता है। जरूरत है एक अच्छी सलाह की, एक ऐसे मनोविश्लेषक की जो आपके मन को बदले, आपकी सोच को बदले। दोस्तों, मेरे साथ मेरी महिला मित्र भी आई है, शांता। इस मौके पर वो आपसे कुछ कहना चाहती है, आइए शांता।
1: हाँ अरुण ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं अरुण से बहुत प्यार करती थी, मगर बुरी संगति में पड़कर जब उसे नशे की लत लग गई थी तो बड़े दुखी मन से मैंने इसे छोड़ दिया था। मगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर इसके साथ जो चमत्कार हुआ है, उस पुनर्वास केंद्र ने इसकी तो जिंदगी बदल दी है। इसलिए मैंने अरुण के साथ अपने रिश्ते को फिर से सामान्य कर लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन पुनर्वास केंद्रों में मनोविश्लेषक डॉक्टरों की मदद लें और अपने जीवन के नर्क को नष्ट करें, इसे स्वर्ग बनाएं। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन अनमोल है, इसे नशे में गर्क ना करें।
0: नशे की एक गलत आदत खुद से खेल के परिवारों को उजाड़ देती है, लेकिन अगर मन में पक्का इरादा हुआ और सही मार्गदर्शन मिले तो हर भटका हुआ नौजवान एक नया सवेरा देख सकता है। अपने परिवार को बचाइए, देश और समाज को मजबूत कीजिए, नशे को हमेशा के लिए दूर भगाइए।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी नाटक नया सवेरा। कलाकार थे सुनील जोशी, सज्जन कपूर, कविता शर्मा, रमनदीप, कमलेश गुप्ता, नीलम शर्मा, बांका बहादुर अरोड़ा, ऋषभ गणेश, मनोज खोसला, विश्वबंधु सुधीर, अर्जुन भल्ला। निर्देशक विनोद कुमार धीर। प्रस्तुति गुरविंदर सिंह।

0: दिल्ली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: क्या बात
1: है, बहुत अच्छा।
2: बुक्कड़ मार के बदला दी ओ दखण वालों
0: आया है,
2: तेरी छत ते बदली छाई है। सावन दे काल में गलिया तू सोनी रौनक लाई है,

0: तेरी मेहर दी सदका ऐ सावन साडे खेतां विच सरमाया है, तेरी छत ते बदली छाई है।
1: खूबसूरत
0: पूड़े खीरा दी खुशबू ने अज आके वेड़े मल्ले ने, हत्थां नाल वट के सेवियां दे पर पर के लिफाफे कल्ले ने।
1: क्या दृश्य जी,
0: मां दा चेता औंदियां ही अखियां च सावन आया है, तेरी छत ते बदली छाई है।

0: क्या बात
1: ओने उस सावण नू की करने जे ओदा पियाना आया है तेरी छत ते बदली छाई है
0: बहुत ही खूब
1: मेरे वेड़े सावन आया है तेरी छत ते बदली छाई है
0: बहुत खूब बहुत
2: दोस्तों मैं एक बार फिर मैडम अनुबाला जी उन्होंने गुजारिश करूंगा कि अपनी एक नवी रचना दे नाल साढ़े श्रोतिया दे रूबरू होंगे
3: शुक्रिया सर मैं गजल दे ही शेर कहांगी ओ चर्चा सी महायुद्धां ते करदे मैं अंदर ली बदीना लड़ रही सी
0: क्या बात
3: ओ चर्चा सी महायुद्धां ते करदे मैं अंदर ली बदीना लड़ रही सी जदों लिखदा सी तू अंबर ते कविता मैं धरती दी हकीकत पढ़ रही सी
0: क्या बात
3: ओ चर्चा सी महायुद्धां ते करदे मैं अंदर ली बदीना लड़ रही सी जदों लिखदा सी तू अंबर ते कविता मैं धरती दी हकीकत पढ़ रही सी
0: क्या बात क्या बात
3: जिवें शीशे च गुजरे किरण कोई मेरी रूह दे हजारा रंग होए जिवें शीशे च गुजरे किरण कोई मेरी रूह दे हजारा रंग होए के दिल दे पानियां विच मार कंकर मैं अपने चों तिरंगा फड़ रही सी हजारा दर्द फैले कागजां ते अनेका हंजुआं दा नाद छिड़िया हजारा दर्द फैले कागजां ते अनेका हंजुआं दा नाद छिड़िया मैं लीरा तो बनी खिद्दो दे वांगू जिउं अपने आप चों उद्दड़ रही
0: सी बहुत खूब

0: रह गईं यारियां, बस देसी यार साड़ी बस्ती आबाद सी, हंजुआ ते होकया तो जिंदड़ी आजाद सी, मुकियां ने मोजा पेश पईयां ने बीमारियां, विधवा ने हो गईयां सदरा कवारियां, तुर गए ने यार साडे रह गईयां यारियां, जांदे जांदे मार गए ओ सीने डाडी चोट भी, आलने च छड़ गए दो निके निके बोट भी, चाड़ दिता चिट्टा रंग चुन्नी ते ललारियां,
1: क्या बात, क्या बात,
0: विधवा

0: क्या बात,
1: रह गईया यारियां।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
2: बहुत बढ़िया।
1: सो आई दी एक कवि सभा इत्थे समाप्त हुंदी है। मैं उन्हां तमाम दोस्तां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने इस कवि सभा विच हिस्सा लिया। मैडम अनुबाला जी आनंदपुर साहब तो, जनाब तरसेम जी बरनाला तो, ते मैं

0: मैडम राजवंत कौर जी खन्ना तो मैं बिशन दास पठानकोट तो बहुत बहुत शुक्रिया
1: हूँ तुसी सुन रहे सी पंजाबी कवि सभा इस विच भाग लिया से बिशन दास अनुबाला तरसेम लाल ते राजवंत कौर ने असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं हूँ तुसी समात फरमाओगे चंद गजलां आगाज कर रहे हैं चित्रा सेन दिकाई इस गजल के नाल।

हाथ से सुन रही पंकज उदास की आवाज च गजल अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हर छोटी बात पे उलझूं वो उम्र गुजर गई, हर छोटी बात पे उलझूं वो उम्र गुजर गई, घर की फिक्र में मेरी सारी बगावत सुधर गई, झुक जाता हूँ कभी हालात और अपनों की खातिर, झुक जाता हूँ कभी हालात और अपनों की खातिर, और नादान लोग समझते हैं कि मेरी हिम्मत मुकर गई।

0: ਸਨਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ, 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट

0: राष्ट्रता आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jayashankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with a very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, the Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy.

0: आवाज बिकार्सी दुदी ती गीत नाकर गुमान गोरी रंग दा प्रोग्राम चले दी स्वागत हर पीती कोई फिर तो दाड़ा सब दा करता है स्वागत जुड़ चुके हैं साड़े अगले फोन कॉलर साड़े नाल स्वागत जी तोड़ा बहुत बहुत
1: हेलो
0: जी स्वागत कौन दे की थोकल कर रहे हो जी
1: हरप्रीत जी सासरीकाल मैं प्रीत सिंह पिंड लद्दवाला जिला फरोईपुर तो बोल रहा
0: हूं वाह प्रीतम जी बहुत बहुत स्वागत ते मेनू जे मैं गलत ना होवा तोड़े नाल गल पहली बारी हो रही है
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत चारा लाया तोड़े नाल क्योंकि मेनू बड़ी खुशी थी तोड़े नाल अपने नाम मिलदे जुलदे ने
0: जी जी बिल्कुल प्रीतम जी मैं भी ये सोच रहा थी कि चलो ये हो गई गल के प्रीतम प्रीतम दा मिलाप हो गया सानू हां जी
1: हां जी हां जी एक बारी ना इस तरह ना जनरल टॉक शो प्रोग्राम चलदा हुंदा सी एक प्रीतम आया सी एक तीन प्रीतम इकट्ठी कौन लगी सी नालो नाल ही बड़ी कमाल वाली गल हुई सी
0: वाह वाह वाह जी चलो अज तुहाडे नाल गल हो गई बहुत चंगा लग रहा है ते स्वागत प्रोग्राम च बहुत बहुत प्यार नाल तुहाडा स्वागत जसवीर कौर जी दी आवाज दे विच शुक्रिया जी काला काला गीत दे बोल ते सुनदे जसवीर कौर दी आवाज दे विच

जिथे शिव ने एक बार लिखिया के मैनू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा गुलाब लै बैठा, ते इधरों जसवीर कौर जी गा रहे ने काला शाह काला मेरा काला ए सरदार। गल दोवां गीतां दे विच रंग दी नहीं है, गल दोवां गीतां दे विच अपने मन की उस खिच दी है जिन्हों जिन्हों हमने प्रीतम जी नाल गल कर रहे थे। प्रीतम जी के नाम च ये गल लुकी हुई कि जिहदे नाल प्रीत पै गई वो फिर इन चीज़ों तो उपर उठ जाते हैं। गीत सुन रहे जसवीर कौर की आवाज़ के प्रोग्राम सुगात जी, एक बार फिर तो स्वागत करते हैं थोड़ा सारे का। जुड़े हुए पिंड थाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जसी सीता और गीता भी स्वागत थोड़ा बहुत बहुत। अनारकली बाजार जगराऊ तो सुनील पाठक, कमल पाठक जी, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी जुड़े ने। प्रोग्राम की शुरुआत में जिन्होंने गुरदास मान का गीत सुनाया, फरमाइश कुछ समय बाद गुरदास मान के एक होर गीत नाल पूरी करांगा। कमला मुला पटियाला तो बत्ता परिवार जुड़िया जी, स्वागत थोड़ा सारे का जी। नितिन जी, पलक जी, किर करम, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश ते नीलम जी, स्वागत थोड़ा बहुत बहुत। सुखबीर सिंह जागली जी, स्वागत थोड़ा बहुत बहुत जी। रोशनप्रीत सिंह समेत कुमलप्रीत जी कौर समेत जुड़े ने जी प्रोग्राम के, बहुत बहुत स्वागत करता हाँ प्रोग्राम के। इस वेले प्रोग्राम का आनंद माण रहे ने जी मेरिट कैंट तो दिग्दर्शन ते कविता गौड़ जी, मेरिट कैंट तो तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच शामिल होण दे लई। संदीप सिंह जी, अमरजीत कौर, सरोज ते मोनिका बस्ती लाडोवाली फिरोजपुर पंजाब तो जुड़े ने जी, बहुत बहुत तुहाडा निघा स्वागत प्रोग्राम दे विच। ते फरमाइश कर रहे हो हरभजन मान की आवाज़ दे विच किसी भी गीत नूं सुणन दी, सुनदिया जी अगला गीत हरभजन मान ते सुनील चौहान की आवाज़ के।

0: यारो दिलदारा तेनो चन कहा के तारा प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात घड़ी समय दस रही है जी 11 बज के हूँ वाले ने एक मिनट रह गया थे वजने जी 11 बज के 40 मिनट स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दे विच व्हाट्सएप दे जरिए प्यारा जहा स्नेहा भेजा सानू पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता राणी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू ते गुड्डू जी स्वागत तुहाडा बहुत बहुत जलालाबाद वैसट तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा जुड़े ने जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत पुंती डाकखाना निमनाबाद मेरे सफीदो मेरे जिला जींद हरियाणा तो जसवीर सिंह जी अरोड़ा जतेंद्र कौर जी गुरप्रीत जी लवप्रीत जी ते करमजीत कौर भी जुड़े ने स्वागत है प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत मैं स्केट नाबा तो साढ़े नियमित स्रोतियाँ चो जी एक ने सुनदा जी कैरव जी ज्योति राणी गुरमन्नत भी जुड़े ने स्वागत है बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच कृष्णबाग दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जी जोड़ा सिटी दीवाना तो गुरबंश सिंह जी जोड़ा भी जुड़ गए ने तुहाडा भी जी बहुत बहुत स्वागत है फोन लाइन के जरिए जुड़े साडे अगले स्रोतियां का भी करते हैं जी साडे प्यारे जी कॉलर जुड़े ने साडे नाल स्वागत जी तुहाडा बहुत बहुत
1: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्कार जी की हाल चाल बहुत ही प्यारा जिहा गीत पंजाबी जबान दे विच आशा भोसले दी आवाज दे विच जिहड़े बहुत गाने ऐसे जिन्हां दी कोई भी जिहड़ी है होर रीस नहीं कर सकदा वैसे गीतां दे विचों एक गीत इस आवाज दा है लो सुनदे हां जी ये पंजाबी फिल्मी गीत

0: मुकेश कहते हैं मोहम्मद रफी दिवास जस सुन रहे गीत प्रोग्राम स्वागत अगले फोन कॉलर जुड़े ने प्रोग्राम दे विच ते इस तो पहला कि उन्होंने कॉल असी लईए बहुत बहुत स्वागत कर देने गांधी चौंक रोपड़ तो पंजाब चिट्ठी भेज रहे ने सानू हरदेव मीका जी बलविंदर विरक जी ते जयदेव विरक मीका ए भी बहुत बहुत स्वागत थोड़ा ते मेहरनगर उमरखंड महाराष्ट्र तो भी सानू चिट्ठी आई है जी ते गुरहानकर जाहिद श्रीमती सरिता गुरहानकर ते प्रिंस एकांश जुड़े ने प्रोग्राम दे विच पिनखाने की ढाब मलोर तो शमशेर सिंह जी कौल सर जसविंदर कौर जी करण प्रताप सिंह मनरीत कौर तरनवीर सिंह ते मनताज जुड़े ने पंजाबी गीत च इन्हां नूं शामिल कर रहे हैं जी नाली नाल प्रोग्राम दे विच निगा स्वागत करते हैं जी महेश गर्ग जी का जशन गर्ग जी विनोद गर्ग जी सुषमा गर्ग जी मंडी हरजीराम मलोर तो इन्होंने चिट्ठी भी भेजी सानू अज बहुत बहुत शुक्रिया ते फोन कॉल जुड़े ने साडे नाल आओ करते हैं उन्होंने स्वागत प्रोग्राम स्वागत
1: हेलो
0: जी स्वागत तुहाडा नमस्कार जी कौन ते कित्थों गल कर रहे हो की नाम तुहाडा जी जी तरसेम जी बहुत बहुत स्वागत दसो के गीत सुनोगे तू चेते आवे बहुत बहुत शुक्रिया कंठ कलेर की आवाज च सुनते हैं जी फिर अगला गीत

हम चाहे जी सगाते एक फरमाइश सानू क्योंकि माफ करना कुछ देरी नाल वह पूरी कर रहे हैं पर साढ़े कोल व्हाट्सएप के जरिए कुलदीप माणी जी की आवाज़ के एक गीत सुनने की फरमाइश पहुँची सी। तो अगला गीत कुलदीप माणी की आवाज़ के ही सुन रहे हैं। हाँ जी कलेरा मोहला पटियाला तो बत्ता परिवार ने इस फरमाइश में भेजा सी। लो जी अगला गीत कुलदीप माणक की आवाज़।

सूरज जी गुलास में दिवस दे विच गीत ते प्रोग्राम सगा चल रहे थे। इसते सी आखरी नगमे वल वध रहे हां। प्रोग्राम सगा दा विषय जी आखरी गीत रबजन मान ते रानी रणदीप दी आवाज दे विच।

0: सजनी कड़ा वजदा कड़ोली वजदी किस दाग देर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: किस दाग देर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: किस दाग देर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: किस दाग देर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: किस दाग देर वजदी
1: सुन मुंडिया।

0: तेनू करी जताई तीन वे कठे तीन तेनू करी जताई तीन वे कठे झूठ ना बोली सूरज लगता मथे झूठ ना बोली सूरज लगता मथे झूठ ना बोली
1: जोर मेरे ने परी सुकाई सौपाइया दी खावा जोर मेरे ने परी सुकाई सौपाइया दी खावा झूठ दे मैं बोला ऐडी ही मर जावा झूठ दे मैं बोला ऐडी ही मर जावा झूठ दे मैं बोला
0: कीने रुग चरी दा लाया कीने कुतरा पीता कीने कारनी विचों कड़के थन्ना दुदा पीता कीने कारनी विचों कड़के थन्ना दुदा पीता लाके करता था गया केड़ा भूखा वाली बठे लाके करता था गया केड़ा भूखा वाली बठे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली
1: सस मेरी दा पुत वो छोटा मन भी मेरी दा पाई मेरा निक्का जोर लादड़ा मैं ओ भी पर जाई मेरा निक्का जोर लादड़ा मैं ओ भी पर जाई ओ पानी मैं तो खट्टा दूध पिलावा जे मंगे

कबूतर बारदी बंदे देखते तेरा मालिक तेनू बचनो सौवरिया का पिछे तेरा मालिक तेनू बचनो सौवरिया का पिछे करी लैन ना जान कदे नी दूर पादियां कठे करी लैन ना जान कदे नी दूर पादियां कठे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली सूरज लगदा मथे झूठ ना

0: मर जावा टूट के मैं बोला, हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला।
1: सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली, सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली।
0: हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला, हड्डी मर जावा टूट के मैं बोला।
1: सूरज लगदा मथे झूठ ना बोली, सूरज लगदा मथे।

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मुहितार है। इस शब्द गायन की तसी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा ने। गुरबाणी विच प्रभु नू मित्तर सज्जन सखा कंत प्रीतम भगवान आदिक अनेक नावां नाल संबोधन किया जाता है। उसकी केड़ी केड़ी सिफत करिए, उसकी कथा अकथ है। सूही राग विचले छंत दे प्रथम भाग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु की सिफतों सलाह करते हुए उसके गुण बयान करते ने कि ओ प्रभु सबना का साजन ते मेरा मित्र सदा मिठा ही बोलता है, डाढ़ा ही मिठा बोलता है। मैं महसूस किया है कि वह तो कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता। दास तो सदैव उस अमृत प्रभु सज्जन की शरण लोचदा होया उसे दी शरण विच है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। इस छंत का गायन किया है भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: पीठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ समल थकी जी ओ कदे न बोले कौरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरप्रीत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया है, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 784 उत्ते राग सूही अंदर छंत रूप विच सुभायमान है। इस पावन पवित्र शब्द राही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा के महान गुणा की महिमा का गायन करद्या होया बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। वह कदे भी कौड़े बोल नहीं बोलता अते ना ही साढ़े औगुणा नू चितारदा है। वह पापिया नू पवित्र करन वाला है अते किसे दी कीती नाम सिमरन दी काल कमाई नू रत्ता पर भी व्यर्थ नहीं जान दिंदा। वह प्रभु कण कण विच व्यापक है, नेड़े तो भी नेड़े है अते आत्मक जीवन प्रदान करन वाला है। आओ इस पावन शब्द दी विस्थार सहित विचार करिए। इस पावन शब्द दे उपर पातशाह ने मंगल दर्ज कीता है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भाव के परमात्मा एक है, अदुत्ति है, उत्पत्ति पालना नास उसे एक परमात्मा तो हो रहा है। वह परमात्मा दया का सागर है जिसकी प्राप्ति गुरु की कृपा दे राही हुंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते हैं कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। ऐसे मिठ बोलड़े परमात्मा नाल सांझ भी उसे मनुख की पै सकती है जिसकी जुबान विच मिठास होवे। फिक्के बोल बोलण वाले मनुख की परमात्मा नाल कदे भी सांझ नहीं पै सकती। सतगुरु तो सानू रोज़ उपदेश करते हैं, नानक फिक्कै बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिए, मोह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए, पाणा लह सजाए। भाव के फिक्के बोल बोलण वाले मनुख का तन अते मन दोवें फिक्के हो जाते हैं। रुखा बोलण वाले मनुख नू दुनिया दे रोक रुखे बचना दे नाल ही याद करते हैं। ऐसा मनुख प्रभु की दरगाह तो भी रद्दिया जाता है अते उसनू फिटकारा पेंदियां हन। ऐसा प्रेम तो हीणा मनुख हर थां ते बेइज्जत हुंदा है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब भी कहिंदे हन कि फिक्के बोल बोलण दे नाल प्रभु की दरगाह विच खुआर होईदा है। इसलिए ऐसे बोल बोलो जिस नाल दरगाह विच इज्जत मिले। पातशाह दे बोल जित बोलिया पत पाई है, सो बोलिया प्रवान, फिक्का बोल वी गुचना सुन मूर्ख मन अजाण। पर दूजे पासे जेड़ा मनुख गुरु की संगत विच आ के बैठता है, नाम जपता है, उसनों मिठ बोलड़ेपन की दात प्राप्त हो जाती है। पातशाह दा बचन है, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। बाबा फरीद भी उपदेश करते हैं कि ए मनुख जे तू परमात्मा दे नाल सांझ पाउणी चाहुंदा है तां कदे किसे नाल फिक्का बोल ना बोली, किसे दा दिल ना दुखाई, क्योंकि सबना दे अंदर परमात्मा वस रहा है। सारे जीव अमोलक मोती हन, बाबा जी दे बचन हन, एक फिक्का ना गालाए, सबना मैं सच्चा तनी, हयाओ न कहि ठाहे, माणक सब अमोल वे। गुरु अर्जन देव जी दे इस पावन शब्द दियां आरंभलियां पंक्तियां विच बख्शिश करदे हन कि परमात्मा मिठे बोल बोलण वाला प्यारा मित्र है। मैं चेते कर करके थक गया हाँ कि उसका कदे कौड़ा बोल बोलिया चेते आ जाए, पर वह कदे भी कौड़ा बोल नहीं बोलता। अगलियां पंक्तियों विच गुरु साहिब बख्शिश करते हैं, कौड़ा बोल न जानै पूरन भगवानै औगण को ना चितारे। परमात्मा साढ़े औगुणा नू चेते नहीं रखता, इसे वास्ते वह गुणा नाल भरपूर प्रभु कदे कौड़े बोल बोलने जानता ही नहीं। मनुख ये अनेक औगुणा नाल भरपूर होने के बावजूद भी परमात्मा उस नाल वैर नहीं करता, बल्कि अपनियां दातां बख्शदा रहिंदा है। पातशाह दा बचन है, औगण को ना चितार दा गल सेती लायक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी बख्शिश करते हैं कि परमात्मा साढ़े औगुणा नू देखता है, परंतु फिर भी दातां बख्शिश करता रहिंदा है। दीन दयाल दया निद दोखन देखत है पर देत न हारै। अगलियां पंक्तियों विच गुरु

साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयाड़ा मेरा साजनड़ा। इस शब्द का गायन किया सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेश शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर्शन प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाना पहेओ, नानक ता का दास है सो निरंजन देव महा

और अंत नहीं पारावा, कौन है करा विचार। जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जान नानक भगत दार तुल ब्रह्म।

के बल बल बल बल सदबलिहार। सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो तानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जानं कौन उपमा देव बड़े ते बड़ानं जाने कौन तेरो भया अलख पा दया अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है हाँ के मल मल बल मल सद मलिहार हाँ के मल मल बल मल सद मलिहार।

0: कार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवन अनंतरो निर्मल विगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो तेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत फणिया दूसर आन न अवर पुरख पौरा तनु सुनिया अमृत हर को नाम ले मन सब सुख पाए जिहरस न चाख्यो तेह जन तिपत अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो इन सब कुल कियो उदार जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संगत प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो इन सब कुल कियो उधार।

सचत पावस करियो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नहो पवे अमुलो जेह कृपाल होयो।

कवन जो कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधिक ते तेज कोर तिर केम न परिये ब्रह्मादिक संकाद शेख गुण अंत न पाए।

0: कहो कहो नहीं जाए, पूर सब रहो समाए, जे काटे सरक दयाल प्रभ से जन लगे पवते, हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते।
1: प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक सरणा, मिला दान संतरेन यह लग पौजल तरना, बिनत कराओ अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे, बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।
2: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सो, कहत मज सोत जिसे दही पात खाए जियो, देख रूप अत अनूप मोह मह मग पई, किन कनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो, काल कलम हुकम फात कह कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो, सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
3: सतगुर नाम एकले मन जपे दड़ो, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरण खेणा मातर जा को दृष्ट तारे, शब्द रद बिचारे काम क्रोध खोवे जियो, जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता, एन सत आन तावे पल कन सोवे जियो, जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मेले तोवे जियो, सत गुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
4: राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सरबर को काहे जियो, सुथर चेत भगत हित भेख तरयो हरनाक सरयो, नख बिदार जियो शंख चकर गदा पदम, आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म, लखे कौन ताहे जियो, सत साच श्रीनिवास आद पुर

की अमृत चाट बिखे बिख खाई माया मो परम पैपुले सुत धारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक

सुकहौ टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाई दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां साहु जिस पास बैठे आसुहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां साहु जिस पास बैठे आसुहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दाल दे दल घा पौ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सीर सुख समघा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दाल दे दल घा पौ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा मेरे मन भज राम नाम अत पिरघा मैं मन तन अर्प धरयो गुर आगै

पकड़ खड़े सब कल घा। धर्म राय सिर दंड लगाना, फिर पछताने हाथ फल घा। हरे राख राख जान किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पल घा। दर्शन संत देह सुख पावे, प्रभु लोच पूर जन तुम घा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभु स्वामी, मोको की जय दान हर निमघा।

राम विटहौ सद घुम घा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोकौ की जय दान हर निमघा जान।

विट्ठल साध घूम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पाओ जन्म मरणा मेटियो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा। Thank you.

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरका गुरु नानक लय त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्यावेताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां सह साहिबजादिया चारियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नार चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोले जे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोले जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत।